0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नकुल मल्होत्रा का गायन, राग था ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते RBI के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा

0: की समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. The Rajya Sabha also passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Secretary, Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. The event is expected to witness participation from BRICS member countries, along with senior policymakers, experts, practitioners, and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. BJP National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in three assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Mr. Naveen said that in Bankipur, Datia, BJP did not receive the expected mandate. He said that the party will conduct a thorough inspection of the election results in both these areas. The Supreme Court has clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। वार्ताकार हैं डॉक्टर इंदु शर्मा।
2: महर्षि पतंजलि भारतीय दर्शन के महान आचार्य एवं सूत्रकार माने जाते हैं। उनका नाम योग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, क्योंकि उन्होंने योग के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनका दर्शन चित्त वृत्ति निरोध पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करके आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर आत्मा यानी दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही योग है, जिससे स्पष्ट होता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक अनुशासन है। महर्षि पतंजलि के जन्म एवं व्यक्तित्व के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। कथानक प्रसिद्ध है कि उनका सिर सांप के फन की तरह था और उनका शरीर मनुष्य के शरीर की तरह। उनके जन्म के संबंध में कहानी प्रसिद्ध है कि एक गोनिका नामक साधिका पुत्र इच्छा से सूर्य को अर्घ देती थी। एक दिन जब वह सूर्य को अर्घ दे रही थी तो आसमान से एक सांप का बच्चा उनके हाथ में आकर गिरा, जिसने मानव के बच्चे का रूप ले लिया। पतंजलि, जिसका शाब्दिक अर्थ है पत अर्थात गिरना, अंजलि अर्थात हाथों की मुद्रा, नाम से स्पष्ट होता है कि अंजलि में गिरने के कारण उनका नाम पतंजलि पड़ा। इनके जन्म के समय को लेके भी बहुत मतभेद हैं। फिर भी लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए तीन मुख्य ग्रंथ मिलते हैं, योगसूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। उन्होंने योगसूत्र या कहें योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की, जो योग शास्त्र का मूल ग्रंथ है और आज भी योग अभ्यासियों, साधकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पद प्रदर्शक है। यह 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य त्रिविध दुख अर्थात आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति है, जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके संभव है। योग दर्शन का ज्ञान इसी पर केंद्रित है। 195 सूत्रों के साथ पतंजलि के योग सूत्र में 4 पाद हैं, जिसमें योग का दर्शन, उसकी पद्धतियाँ और प्राप्त होने वाले लाभ

0: लक्ष्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। पहला है समाधिपाद, ज्ञान से संबंधित अध्याय, जिसमें हमें संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात समाधि का विशेष वर्णन मिलता है, साथ ही साधना मार्ग में आने वाले 9 विघ्न और इन 9 विघ्नों से संबंधित सहयोगी विकार का भी वर्णन मिलता है तथा ईश्वर एवं अभ्यास वैराग्य की महत्ता का वर्णन भी इसमें वर्णित है। दूसरा साधनपाद, अभ्यास से संबंधित अध्याय। तीसरा है विभूतिपाद, सिद्धियों पर आधारित अध्याय। चौथा है कैवल्यपाद, मुक्ति पर आधारित अध्याय। यह समस्त ज्ञान मानव को उत्तम जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से अयोध्या कांड भाग 7।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूँगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में अयोध्या कांड भाग सात। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23तम राष्ट्रमंडल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 51,600,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीकाभाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनाङ्के एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेष

0: ज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति संभाव्यते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेश मंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तमवर्षस्य राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णम् इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमेरिकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क ये आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए

पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रीता स्वामी चौधरी के गाए हुए भजन।

अभी आप संगीतिका कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 और 13 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। ये खूबसूरत सा गीत आपने इम्तिहान मूवी से सुना और उम्मीद करती हूं कि ये सुबह का सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया होगा और चाय की एक चुस्की के साथ आपको ये गाने की शुरुआत आपका दिन बना दिया होगा, क्योंकि यह एक एवरग्रीन गीत है जो सुबह के शांत वातावरण में पक्षियों के चहचहाने की तरह सुकून देता है। इसके बोल जीवन में आगे बढ़ने और आशावादी रहने का संदेश देते हैं। सुबह के समय हल्का और मधुर संगीत मन को शांत करता है और पूरे दिन के लिए सकारात्मकता प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के ये गीत जो होते हैं वो सुकून के हमें बहुत पल देते हैं। सुबह की खूबसूरती ताजी हवा, खिलते फूल और सूरज की पहली किरणों में है, जो अवसरों व उम्मीदों के साथ जीवन को रोशन करती है।

मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करना ही सबसे बड़ा सुख है। हर नई सुबह खुद को एक नई ताकत और सकारात्मक ऊर्जा देने का और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है।

फूल प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहार है, जो निस्वार्थ प्रेम, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे खिलना है और प्रतिकूलता के बावजूद सुगंध कैसी फैलानी है। फूल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और तनाव को कम करने में भी मदद करते हैं। फूल हमें सिखाते हैं कि सुंदरता का अर्थ है निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित कर देना और खुशियां बांटना।

श्वेता, हर फूल की अपनी एक जुबान होती है, और सबसे खास बात सावन में जो बेला और जूही के फूल खिलते हैं ना, उनकी खुशबू सीधे दिल तक जाती है। सावन और फूल, ये रिश्ता बहुत पुराना है। बारिश की बूंदें जब पत्तों पे गिरती हैं और मिट्टी की खुशबू के साथ बेला महके, उफ। एक छोटी सी शायरी आपको सुनाते हैं। सावन की रिमझिम और हाथ में गुलाब, सावन की रिमझिम और हाथ में गुलाब, तुम पास हो तो लगता है खिला है हर ख्वाब।

दोस्तों, हमारे यहाँ फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं, शादी में भी काम आते हैं और मेहमानों के स्वागत में भी। और कहते हैं कि घर में ताजे गेंदे के फूल रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा।

श्रोताओं, सावन में फूलों की बातें करते करते वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में भी फूल की तरह ही महकते रहना, किसी को कभी दुख ना पहुँचे ऐसे काम हमेशा करना। मैं रेडियो सखी निधि वर्मा अब इस कार्यक्रम से लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, महकते रहो। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि इसकी अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का

0: रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लिमानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के ओहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस दो रोज़ा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आज़ाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अमीन खान का गायन, राग है मियाँ की टोडी।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुन रहे थे स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया अमीन खान का गायन, राग था मियाँ की टोडी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां पहुंचाते रहते हैं नए नए विशेषज्ञों द्वारा, ताकि वो उन जानकारियों का लाभ उठा सकें और अपने चाहने वालों को भी उससे लाभान्वित कर सकें। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों ने भी ये जरूर सुना होगा कि रमन प्रभाव और सीवी रमन के बारे में। सर सीवी रमन ने जो अपनी ऐतिहासिक खोज की थी रमन प्रभाव की, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। उस इंस्टीट्यूट ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं 29 जुलाई 2026 को। इस इंस्टीट्यूट का क्या महत्व है, खास करके विज्ञान के विकास में, वैज्ञानिक संचार के विकास में और एक वैज्ञानिक विचारधारा के विकास में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की, कि वो किस तरह की संस्था है, क्या कार्य कर रही है, नवाचार, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की क्या भूमिका और महत्व है। इन सब जानकारियों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी। वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के सचिव भी रह चुके हैं। भारत की विज्ञान नीति, अनुसंधान प्रणाली और वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं इस संस्था से जिसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: तो जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषणों का राज था, और उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी सदियों में उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि भारत ऐसा ना हो कि पूरे दुनिया से पिछड़ जाए, क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। तो उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसे हुआ था जिसे रिनायंस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग ये बंगाल रिनायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे।
1: अच्छा।
2: तो मेडिकल डॉक्टर थे और रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहाँ पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी भावना से, एक बहुत स्वदेशी भावना से, महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज 1926 है, तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का। और इस संस्थान के साथ काफी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि जगदीश चंद्र बसु जी है, सत्येंद्रनाथ बसु जी है, मेघनाथ सहा जी है, और जैसे कि आपने कहा कि सीवी रामन जी है, उन्होंने भी इसी संस्थान में काम करके हम लोग जिसे रामन इफेक्ट कहते हैं, रामन प्रभाव, उसकी खोज की थी 1928 में, और वो इसी संस्थान में से की थी, जिस संस्थान को एक बहुत स्वदेशी भाव से बनाया गया था कि हमारे देश के वैज्ञानिक यहाँ के काम कर सके। ये जो महेंद्रलाल सरकार जी का जो सपना था वो सीवी रामन जी और मेघनाथ सहा जी ने सभी ने मिलकर उस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दिया। और जैसे कि मैंने कहा कि 150 वर्ष का बहुत ही गौरवशाली समय रहा है इस संस्थान का, और आज भी इस संस्थान में काफी अच्छे अच्छे

0: यानी काम कर रहे हैं, काफी अच्छा विज्ञान हो रहा है।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बना था, बनाया गया था, तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: भारत के ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक जो थे जिन्हें नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ यहाँ पे काम करते हुए, और उसके पीछे कहानी आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही रोचक कहानी है। आपने सुना होगा कि सीवी रमन जी ब्रिटिश सरकार के अकाउंट ऑफिस में थे, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम किया करते थे। तो उन्होंने जब मास्टर्स किया अपना मद्रास में, तो उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और उन्हें नौकरी मिल गई थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। बल्कि उनकी रुचि विज्ञान में थी, पूरी रुचि, उनका मन, पूरे हृदय से वो विज्ञान से जुड़े थे, लेकिन काम करने के लिए तो कहने के लिए तो वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम करते थे। और उस वक्त रमन जी की पोस्टिंग हुई कलकत्ता में, और ऑफिस जाते वक्त एक दिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बोर्ड देखा, और बोर्ड पे लिखा हुआ था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और ये देखते हुए रमन जी के मन में बहुत उत्सुकता उभर कर आई, तो रमन जी पधारे इस इंस्टीट्यूट में और उनका स्वागत किया। उस वक्त वहाँ पे अमृतलाल सरकार जी थे, जो महेंद्रलाल सरकार जी के बेटे थे।
1: अच्छा।
0: महेंद्रलाल सरकार जी उस वक्त नहीं रहे, लेकिन अमृतलाल सरकार जी इंस्टीट्यूट का काम देखते थे, और रमन जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे जैसे लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अमृतलाल सरकार जी ने कहा कि जरूर काम कर सकते हैं, आप जरूर रहिएगा और आपको जो कुछ सुविधाएं चाहिए हम उसे आपको उपलब्ध कराएंगे इंस्टीट्यूट में। और उस तरह से 1907 में रमन जी का इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से जो नाता जुड़ा, वो काफी लंबे समय तक 1933 तक कलकत्ता में रहे, तब तक वो लगातार यहाँ पे काम करते रहे। 1907 से 1917 तक 10 साल सीवी रमन जी का पूरा दैनिक शैली जो थी, एक बहुत ही अजीब जैसी शैली हम मानते हैं, क्योंकि इनमें तो अपने दफ्तर में काम करते थे, लेकिन दफ्तर जाने से पहले सुबह उठकर सबसे पहले वो इंडियन कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS कहते हैं वहां पे आते थे, वहां पे कुछ अपने प्रयोग वगैरह करने वहां पे करते थे, कुछ पढ़ाई करने करते थे, फिर दफ्तर में काम खत्म होने के बाद शाम को फिर IACS आते थे और अपना काम करते थे। 1917 के करीब कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलगुरु आशुतोष मुखर्जी थे, आपने नाम सुना होगा, आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फादर थे, तो उन्होंने रमन जी को देखा और उन्होंने सीवी रमन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पलिट प्रोफेसरशिप की ऑफर दी कि आप यहाँ पे आके पलिट प्रोफेसरशिप बनो। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में लोगों ने काफी विरोध किया इस बात का, इसलिए कि सीवी रमन के पास PhD डिग्री नहीं थी, वो केवल MSc थे, तो इसलिए फिर आशुतोष मुखर्जी ने सीवी रमन जी को एक ऑनररी डिलीट प्रदान की।
1: अच्छा।
0: और डिलीट प्रदान करने के बाद फिर सीनेट ने मंजूरी दी कि वो यहाँ पर पलिट प्रोफेसर करके आ सकते हैं। तो दो पलिट प्रोफेसर फिर वहां पे उन्होंने काम किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, एक थे प्रफुल्ल चंद्र राय जी और दूसरे थे सीवी रमन जी। उस वक्त बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, ये लाइट या पार्टिकल है या लाइट या वेव है। दोनों की काफी चर्चा हो रही थी पूरे विश्व में। तो रमन जी ने अपने मन में एक सोचा कि अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल की अपनी एक ऊर्जा होती है, और ये लाइट किसी अगर मीडियम के थ्रू जाता है, मीडियम के गुजरता है, तो मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि लिक्विड है, कोई द्रव है, उसमें से अगर लाइट का फोटोन जाए तो जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, और फोटोन अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को देगा या उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अपने पास भी लेगा, और ये दोनों हो सकता है। और ये सोचकर रमन जी ने फिर अपने वहां पे प्रयोग किए, और इसका फलस्वरूप 28 फरवरी 1928 में रमन जी को एक बहुत बड़ा उनका शोध का कारण मिला उसका। तो इसे बताया गया कि सही में जो फोटोन है वो एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है अपने लिक्विड के मॉलिक्यूल से, जिसे कि आज हम लोग रमन इफेक्ट से जानते हैं। तो 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन ने पूरे दुनिया के सामने में ये घोषणा की कि मुझे एक ये नया शोध मिला है, जिसे हम आज के दिन में रमन इफेक्ट से जानते हैं, और इसी शोध की वजह सीवी रमन जी को 1930 का नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ।
1: और उस दिवस को 28 फरवरी को जो है प्रत्येक साल हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा।
0: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने GD बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और GD बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया, और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो ले नहीं जा रहे साथ में।
1: स्कैटरिंग
0: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: इंसा के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए कि किस तरह की संस्था है और किस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी है।
0: ऐसा है कि 1934 में देश के जो मुख्य वैज्ञानिक थे उनके मन में ये भावना आई कि क्यों ना देश में एक ऐसी अकादमी हो जहाँ पे सभी वैज्ञानिक आके खुली तरह से चर्चा कर पाए, विचार विमर्श कर पाए अलग अलग चीजों पर, अगर पॉलिसी हो तो पॉलिसी का विचार करे, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा एक अकादमी होना चाहिए जो बाकी अकादमियों के साथ उसका संबंध हो, या हमारे देश में जो विज्ञान चल रहा है वो सामान्य लोग तक किस तरह एक प्रभावी तरफ से ले जाए। तो ये सब चीजें लोगों के मन में आई, जैसे कि मेघनाथ साहा जी थे, होमी भाभा जी थे, इन लोगों ने मिलकर फिर ये सोचा कि ऐसी एक अकादमी बनाई जाए जिसे आज हम लोग इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है, इसकी स्थापना की गई 1934 में और वो आज तक लगातार चलती आ रही है। अभी 92 साल इसे हाल ही में पूरे हुए हैं और अकादमी में आज के दिन हम करीबन 1100 वैज्ञानिक इससे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी फेलोशिप होती है वो इलेक्शन से होती है, बाकी फेलोशिप बाकी जो फेलोज है इसके वो अलग नए फेलोज को इलेक्ट करते हैं। और इसमें काफी सारे विदेशी वैज्ञानिक भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं और मुख्यतः कई सारे नोबेल परिषद विजेता या फिर कई फील्ड्स मेडल्स के लोग भी हमारे साथ इस अकादमी में जुड़े हुए हैं।
1: क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए थे, विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
0: तो काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में गए कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में एक चीज और बताइए कि आकाशवाणी जैसे माध्यम का युवाओं के अंदर विज्ञान के विचार, विज्ञान के प्रति आकर्षण के लिए, विज्ञान के प्रति उनके जुड़ाव को जोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी के महत्व को बताते हुए?
0: ऐसा है कि आकाशवाणी के माध्यम से आप तो भारत की पूरी जनता के साथ जुड़े हुए हो और मेरे लिए अपने आप में बहुत अभिमान की बात है कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बड़ा आनंद किसी को नहीं होगा कि आज के दिन पूरे विश्व में किसी चीज का ज्ञान ना हो लेकिन मेरे अनुसंधान की वजह से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अपने आप में बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, अपने आप में बहुत अभिमान हम लोग मानते हैं। समझना चाहोगे तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर विज्ञान में आइए और आप भी देश के अनुसंधान में और विज्ञान को सामने मिले जाने में जुड़िएगा।
1: जरूर, ये बहुत बड़ी बात होगी मानवता के लिए और देश के विकास के लिए भी। प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने एक महत्वपूर्ण संस्थान जहाँ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्र में अपने योगदान दिए हैं, सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के बारे में बताया कि किस तरह उस संस्थान में कार्य करके उन्होंने किया, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जिसने अपने स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे किए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी, आपने इंसा के महत्व के कार्य के बारे में बताया और युवाओं के लिए आपके प्रेरक प्रसंग, इन सब के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: गीत तुसी सुन रहे सी गायक हरजीत हरमन की आवाज़ च। गीत दे बोल लिखे सन प्रगट सिंह ने ते संगीतबद्ध कीता सी अतल शर्मा ने। दिल च जे कुछ कर गुजरन दा जनून होवे तां रुत्तां भी बदल सकदियां ने। पानी नूं बचाउण दे लई सानू सारयां नूं ही सोचना पवेगा ते ए सिर्फ एक जने दी सोच नाल ही संभव नहीं, सगों सारयां नूं मींह दा पानी बचाउण लई हंबला मारना पवेगा। मीह दे पानी लई तुसीं टैंक बना सकदे हो जिस च पानी नूं स्टोर करके रखिया जा सकदा है। यही नहीं, पिंड दीआं पंचायतां सरकारी ते गैर सरकारी संस्थावां नूं मिल के पानी नूं रिचार्ज करन वाले सिस्टम लाउणे चाहीदे ने तां कि मीह दे पानी नूं साफ सुथरा करके धरती च भेज के मुड़ तों पीण लायक बनाया जा सके। इस लई हंबला सब नूं मिल के मारना पवेगा। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ।
1: ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਮਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਪਰਿੰਦੇ ਸਹਿਮ, ਪਰਬਤ ਹੀ ਜੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹਿਰ। ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਈ ਨਾ ਦੂਰੀ ਘੱਟ। बंदे दौड़े जा रहे, जिंदगी गई है ठहर। पेंडा भी तय हो रहा, होई ना दूरी घट। बंदे दौड़े जा रहे, जिंदगी

0: दीवे जगदे सच दियां दरगाहां ते। शेर है कि समझ लई ना दोस्त ओ तां दुश्मन है, समझ लई ना दोस्त ओ तां दुश्मन है, पढ़दे पौंदा है जो तेरे गुनाहां ते। समझ लई ना दोस्त ओ तां दुश्मन है, पढ़दे पौंदा है जो तेरे गुनाहां ते, पढ़दे पौंदा है जो तेरे गुनाहां ते। ते अगला शेर है कि हिम्मत है तां पाओ नथ तूफाना नू, हिम्मत है तां पाओ नथ तूफाना नू, दोष मड़ो ना एवें सदा मलाहां ते। हिम्मत है तां पाओ नथ तूफाना नू, दोष मड़ो ना एवें सदा मलाहां ते। ते शेर है कि अर्जन बन के महारथी कोई नितरेगा, अर्जन बन के महारथी कोई नितरेगा, लक्ष्य टकेगा उस दियां जदों निगाहां। अर्जन बन के महारथी कोई नितरेगा, लक्ष्य टकेगा उस दियां जदों निगाहां ते। ते शेर है कि हुंदे लोक समर्पित समें दे हाणी नूं, हुंदे लोक समर्पित समें दे हाणी नूं, कोई ना करे भरोसा लापरवाहां। हुंदे लोक समर्पित समें दे हाणी नूं, कोई ना करे भरोसा लापरवाहां ते। आखरी शेर, करो फैसले खुद ही अपने सेखवां, करो फैसले खुद ही अपने सेखवां, कद तक चलना होरां दियां सलाहां ते। करो फैसले खुद ही अपने सेखवां, कद तक चलना होरां दियां सलाहां ते, कद तक चलना होरां दियां सलाहां ते। भगदड़ मचदी झूठ दियां अफवाहां ते, भीड़ कदे ना हुंदी सच दियां राहां ते, भीड़ कदे ना हुंदी सच दियां राहां ते, भीड़ कदे ना हुंदी सच दियां राहां ते।
1: कविता पाठ तुसी सुन रहे सी जसवंत सिंह सेखवा तो। ते हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे तोरदे हां। सौण दा महीना होवे ते उत्तों होवे रात, तां फिर इश्के दी बात तां अपने आप ही छिड़ जांदी ए। ते गायक जसबीर जस्सी वी सावन दी रात च पैंदी बरसात च छिड़ी इश्के दी बात नूं कुझ इस तरह बयान कर रहे ने। सावन दी रात टिप टिप बरसे बरसात टिप टिप, आओ फिर सुनदे हां ये गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद

0: संसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को से इससे माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स और पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदांबी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, is underway at the Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and other leaders are attending the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, are also attending the alliance meeting. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
1: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए.
2: The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries, along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. India and Uzbekistan have agreed to expand their strategic partnership by strengthening cooperation in critical minerals, mining, trade, energy, infrastructure, defense and education during high-level talks held in New Delhi yesterday. The discussions took place during the four-day official visit of Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov, who met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Indian Railways recorded growth of 9% in freight loading in July this year as compared to the corresponding month of the previous year. It loaded 141.3 million tons of freight during July 2026 compared to 129.7 million tons in July last year. The performance reflects sustained demand across core sectors of the economy and continued efforts to improve freight logistics and operational efficiency. Ministry of Road Transport has provided a draft notification proposing an amendment to the Central Motor Vehicles Rules 1989 to bring two-wheeled road ambulances for emergency medical care. The ministry underlined that the proposed emergency ambulance service will support faster emergency response and improve access to emergency medical care in remote areas. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall in Meghalaya and Arunachal Pradesh today and tomorrow. The weather system is likely to impact several districts of Assam, particularly those bordering the two neighbouring states. The Assam State Disaster Management Authority has urged people in the concerned districts to take all necessary precautions and remain vigilant. U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Trump also said discussions were underway to reopen the Strait of Hormuz completely, possibly by tomorrow. He described this as the first phase, with the second phase focusing on the denuclearization of Iran. However, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai denied reports of direct or indirect negotiations with the U.S., saying Tehran was not holding talks with Washington. India's badminton stars will begin their campaign today at the Career Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today at the Asan Yi Sunsin Gymnasium in Asan, South Korea. The tournament will run until 9th of this month. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त सुबह के 10:10 हुए हैं और अब वक्त है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोता चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं ये गीत जो भेजी हुई है आप ही की फरमाइशों में से।
1: Mm-hmm.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है एसपी गोयल जी का, जो हमें रोहिणी दिल्ली से लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ हैं रेणु गोयल, विदित गोयल, और जो अगला संदेश है वो है हिमकेश्वर साहू का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है करण, राहुल साहू, चंपा साहू। और अगला संदेश है सतीश अनेजा का, और इनके साथ जो हैं वो है बिमला अनेजा। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से। श्रोताओं, बहुत

सारे लोग हमें ये संदेश भेज रहे हैं कि आज किशोर कुमार जी की जयंती है और हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं। और जो श्रोता, मैं आप ही के द्वारा सुनना चाहती हूँ कुछ अनकही किस्से उनके बारे में, तो फटाफट से हमें मेल करिए हमारे ipradiodelhi@gmail.com पर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ipradiodelhi@gmail.com पर। इस पर हमें भेजिए कुछ अनसुने अनोखे किस्से किशोरदा के बारे में। फिलहाल सुनते हैं अगला गीत जो आप ही के भेजी हुई फरमाइशों में से एक है।

श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो है बिट्टू भाटिया का। इनके साथ है रीटा भाटिया, राजित भाटिया, मयंक भाटिया, झरझर हरियाणा से। अगला जो संदेश है वो है नवाब खान का और वारली मुंबई से हमें लिखकर भेज रहे हैं इरशाद जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। अगला जो संदेश है वो है राधेश्याम शर्मा का, इनके साथ इंद्र शर्मा, सार्थक शर्मा, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। अगला संदेश है मदन गोतवाल का और ये हमें कहाँ से लिखकर भेज रहे हैं, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नांगलोई दिल्ली से और इनके साथ हैं ये हैं मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। अगला जो संदेश है राजेश वर्मा जी का, इनके साथ हैं मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर और आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर।

श्रोताओ, अगला संदेश आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। अगला संदेश है फातिमा कॉलोनी से श्री रामपुर महाराष्ट्र। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद, साबिहा मिखाइल और जैनब मुजावर का। और जो अगला संदेश है वो है बोधराज खोरवाल का उत्तम नगर दिल्ली से। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। अगला संदेश है एसपी गोयल और इन्होंने हमें बहुत ही प्यारा संदेश भेजा है। साथ ही इनके साथ जो है अगला जो संदेश है वो मास्टर अशोक कुमार वर्मा का है और ये इनके साथ है अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना।

श्रोता, हमारे पास संदेश आया है सतीश अनेजा जी का, जो लिखकर हमें भेज रहे हैं कि किशोर कुमार का जो थे वो चार भाई बहन में सबसे छोटे थे। ज़िद्दी स्वभाव था उनका और इत्तेफाक़ की बात है कि उन्होंने सन 1948 में पहली बार ज़िद्दी फिल्म में गीत गाया। संगीतकार से भी ज़िद कर लिया करते थे और गीतों में अपनी अपनी योडलिंग लिफ्ट करवाई और कुछ गीतों में, और वो सब गीत सुपर हिट थे।

श्रोताओं, अगला संदेश है रमेश चौहान का, कुड़ी सेक्टर 5, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांशु। और जो अगला संदेश है फागू राम यादव का, इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगला संदेश जो है सतवीर सिंह का है और इनके साथ है राजपाल अभिषेक, योगेश पूजा, आरजू नाव्या। और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं जिला सिरसा हरियाणा से नरेश मल्होत्रा का अगला मैसेज है। इनके साथ हैं लक्ष्य, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। अगला संदेश जो है वो है रविंद्र सिंह छाबड़ा का, और इन्होंने लिखा है कि किशोर कुमार शायद इकलौते ऐसे निर्माता या निर्देशक थे जो जानबूझकर फिल्म बनाकर नुकसान उठाना चाहते थे। आयकर देने से उन्हें इतनी नफरत थी। उनके समय में फिल्म सितारों पर उच्चतम कर श्रेणी में लगाया जाता था। और ऐसी श्रोता, इन्होंने जो संदेश भेजा है बहुत ही अच्छा संदेश भेजा है। और जो अगला संदेश है वो है इंद्रजीत छाबड़ा का, और साथ ही बबल जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। इंद्रजीत छाबड़ा जी ने हमें भेजा है, जब किशोर कुमार का मन करता था उनके पास पैसे कम होते तो वे गीत लिखने की कोशिश भी करते थे। महान संगीतकार शैलेंद्र ने जब किशोर कुमार को फ़ोन पर किशोर द्वारा लिखा गया गीत आज चल के तुझे मैं लेके गाते हुए सुना तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने किशोर से कहा, अगर मुझे गीत लिखना होता तो मैं इसे बिल्कुल इसी तरह लिखता। और जो अगला संदेश है वो मस्कीन दादा जी का है, और अगला संदेश है ओम प्रकाश राय का। इनके साथ है श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, तुलसी मस्कीन जी हमें लिखकर भेज रही हैं। और भारत भूषण जी का अगला संदेश आया है। साथ ही अगला जो संदेश है वो है कपिल छीपा, धर्मेंद्र छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपाल गढ़ राजस्थान से रविंद्र मोहन दास हमें संदेश भेज रहे हैं। और इनके साथ है आशा देवी, किशनगंज बिहार से। अगला जो संदेश है वो है कुणाल सिंह का, और इनके ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। अगला संदेश जो है वो है बिट्टू गजनेजा का, इनके साथ है सुरेश, पूनम गजनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, जलालाबाद वेस्ट से। अगला संदेश है रविंद्र मोहन दास, धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेजन के साथ है कपिल, ईशान, पूजा परिहार।

एसपी गोयल जी ने हमें संदेश भेजा है। फिलहाल संदेश भेजने से सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत, जो ही बहुत ही प्यारा सा गीत है, आप ही की भेजी हुई डिमांड से।

श्रोताओं, सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा किस्सा भेजा है किशोरदा के बारे में। बात उस समय की है जब किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। वे अवसाद से गुजर रहे थे और वापस अपने पैतृक नगर खंडवा जाने का मन बना चुके थे। उन दिनों तक SD बर्मन संगीतकार के रूप में स्थापित हो चुके थे और एक फिल्म का संगीत बना रहे थे। सचिन दा ने एक गाने को गवाने के लिए किशोर कुमार को कई बार बुलवा भेजा, लेकिन वे आने से इनकार कर देते। सचिन दा को किशोर कुमार का टैलेंट पता था, इसलिए वे उनसे ही वे गाना गवाना चाहते थे। सचिन ने किशोर दा को फ़ोन किया कि उन्होंने उसके लिए उनका मनपसंद डिनर तैयार करवाया है, इसलिए वे उनके घर आए। किशोर दा ने खाने के नाम पर आने की सहमति तो दे दी, लेकिन शर्त रख दी कि वे गाना नहीं गाएंगे। सचिन दा ने कहा, ठीक है, तुम आओ तो सही। किशोर दा सचिन दा के घर आए और अपना मनपसंद खाना खाए। सचिन दा ने चुपके से अपने नौकर से सारे दरवाज़ों पर अंदर से ताला लगवा दिया ताकि किशोर दा भाग ना सके। फिर उन्होंने कहा, देखो किशोर, ये धुन मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे

बनाई है और तुझे गीत गाना ही पड़ेगा। तुम अपने पर विश्वास खो चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारे हुनर का बखूबी ज्ञान है। तुम्हारे बड़े भाई अशोक कुमार ने कभी मुझे भी वापस कलकत्ता जाने से रोका था। देखो मैं कामयाब हो गया और तुम भी अवश्य ही कामयाब होगे। सचिंदा की बातों का किशोरदा पर ऐसा असर हुआ कि वह गाना गाने को तैयार हो गए। अगले दिन गाने की रिकॉर्डिंग हो गई। इसके बाद फिल्म फंटूश में किशोर कुमार ने और भी कई गीत गाए। बहुत ही रोचक किस्सा आपने भेजा जो हम सबको सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अगला संदेश आया है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामण शेंडे, किशोर धनाड़े और हिम्मत राव शुंगारे, राजेंद्र गुप्ता और दीपक। अगला जो संदेश है सीताराम कांगड़ा का है। इनके साथ है बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड, जो हमें लिखकर भेज रहे हैं रोहतक से। अगला संदेश है रविंद्र मोहन दास और ये किशनगंज बिहार से हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है आशा देवी। भरत भूषण जी का अगला संदेश है छोटे अंसारी हमें भेज रहे हैं। इनके साथ है आलम अंसारी, असद अंसारी। और अगला जो संदेश है वो है गोविंद वैष्णव का। ये हमें ग्राम लसूडिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से लिखकर भेज रहे हैं। सुमन कोमल पारी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। और जो अगला संदेश है वो है नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जयलाम से, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से। अगला संदेश है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमें लिखकर भेज रहे हैं बुलंद शहर से। अगला जो संदेश है वो हरजिंदर सिंह भाटिया का है। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जमशेदपुर से। और श्रोताएं, हमारे पास काफ़ी संदेश आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कि गीतों की फरमाइश भर भर के आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत आपकी भेजी हुई फरमाइश से।

साथे पर्ल डिकैस्ट्रो विलिस डिकैस्ट्रो जोन डिकैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से जो अगला संदेश है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का, इनके साथ है तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जो हमें मध्य प्रदेश से लिखकर भेज रहे हैं, किशन वंजानी का अगला संदेश है, और जो अगला संदेश है वो है संदीप मक्कर का, और इनके साथ हैं ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी जालंधर से, और अगला जो संदेश है मुकेश कश्यप का है, इनके साथ हैं शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन मुखी जी की संदेश आया है और उनका संदेश हमने पढ़ा, साथ ही जो अगला संदेश है वो है बब्बल मल्होत्रा मोहाली पंजाब से, इनके साथ है ओम प्रकाश मल्होत्रा।

0: श्रोताओं, अगला संदेश है दिलावर खान का और इनके साथ है हसीना बानो, एलिजा नायाब। अगला संदेश है संदीप मक्कर का, इनके साथ है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक जालंधर से। अगला संदेश है सुरेश खुराना का और इनके साथ है किरण खुराना, लव्या अरब खुराना, एस के पप्पी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं MLB रोड ग्वालियर से। और निसार अली का अगला संदेश है, साथ ही जसबीर सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। पंकज शर्मा का अगला संदेश है और जो अगला संदेश है वो है SM जावेद का, इनके साथ है शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से।
1: पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अगला संदेश आया है प्रवीण हागोड़े का। उनके साथ है योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागोड़े और समस्त परिवार, और यह मिलकर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। अगला जो संदेश है वो है गोलादास गुलाब दास जी का, और वो जो सुनना चाह रहे हैं गीत, वो कोई भी गीत सुनना चाह रहे हैं। तो श्रोताओं, बहुत लोगों की जो डिमांड आ रही है वो इसी गीत के लिए आ रही है, फिल्म याराना से। तो जाते जाते सुनते हैं

श्रोता, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी फरमाइशें पर समाप्त होता है और मैंने कोशिश की आप सभी का नाम हमारे इस कार्यक्रम में ले पाऊँ, लेकिन अगर कुछ नाम छूट गए हो तो हम उन नामों को अपने अगले कार्यक्रम में ज़रूर पेश करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त।

0: तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। सुबह के 11 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया। आज सुबह नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया जो दोनों सदनों में नागरिकों के हित में सफलतापूर्वक पारित हुए। श्री पात्रा ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। ये बैठक संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी बैठक में शामिल थे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
2: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इसका उद्घाटन करेंगी। इस बैठक में संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, was held at the Parliament House today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and other leaders were present at the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, also attended the alliance meeting. Lok Sabha is scheduled to take up the Bankers Books Evidence Bill 2026 today. Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to move the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices.

इसी के साथ ही हमारा आज का ये सबरस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें वॉयलिन पर आप सुनेंगे मोहम्मद यूनुस वारसी, तबले पर संगत दे रहे हैं आशुतोष मिश्रा, राग है शुद्ध सारंग। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में आप सुन रहे थे वॉयलिन पर मोहम्मद यूनिस वारसी, तबले पर संगत दे रहे थे आशुतोष मिश्रा, राग था शुद्ध सारंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के

0: हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. and the Rajya Sabha till 12 noon following repeated disruption by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET paper leak issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. Mr. Birla urged all members to cooperate in running the House, saying that disruption during question hour is not appropriate. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs was tabled. Then Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour amid opposition uproar. Leader of Opposition Mallikarjun Kharge raised the matter of alleged theft of donations from the Ayodhya Ram Temple. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Congress and Samajwadi Party, which opposed the Ram Temple in Ayodhya, are now attempting to mislead the public by staging

की रेडियो सखी कल्पना, तो स्वीकार कीजिए सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। और आज है मंगलवार, सावन के महीने का जो प्रत्येक मंगलवार होता है वो जाना जाता है मंगला गौरी व्रत के लिए। और आज हमारी बहुत सी सखियां हैं जिन्होंने ये व्रत रखा होगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अलावा विज्ञान भी ये मानता है कि भाई उपवास जो है वो तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। तो इसी पर एक दोहा याद आता है मुझे, सुनिएगा, कि रूप राशि की प्रभा से मन नहीं होत पवित्र, जितना सुंदर चित्त हो उतना सुंदर चित्र। और इसी बात से संबंधित है हमारा आज का प्रश्न भी, क्योंकि हम हमेशा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न वो ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो मन शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने जवाब, अपने उपाय हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके उत्तरों की, आपके जवाब की प्रतीक्षा है। और फिलहाल तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो गीत आप सुन रहे थे, इस फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो, जिसे गाया मुकेश और आशा भोसले जी ने। और देखिए, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि हम दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। मुझे एक

एक शेर याद आता है कि जो अपनी ज़िंदगी दुनिया के नाम करता है उसी का सारा जहां एहतराम करता है। तो आज है दिन विशेष में खास बातें आपके लिए। तो आज है जयंती भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता, समाज सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में से एक फिरोज शाह मेहता की। वे भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, प्रख्यात विधि वेत्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे, जिन्हें बॉम्बे का शेर नाम से जाना जाता है। आज उनकी जयंती पर हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज एक और महान गायक की जयंती है जो हम सबके पसंदीदा है और जिनका नाम है किशोर कुमार। ये भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सदाबहार गीतों के लिए वे आज भी करोड़ों लोगों के प्रिय बने हुए हैं। फिल्म फेयर जो कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिला उन्हें, पुरुष के उसमें जो पुरुषों वाला कैटेगरी होता है उसमें, तो 8 बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता था और ये भी एक रिकॉर्ड रहा। और क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, इसलिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने उनके सम्मान में किशोर कुमार पुरस्कार की स्थापना की। तो आइए हम भी उन्हें स्मरण करते हैं और उनके ही गाए हुए इस गीत को सुनते हैं, फिल्म बुढ़ा मिल गया से।

दोस्तों देखिए, हमारा एक प्रश्न था हमारे श्रोताओं से कि भाई जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं, तो चलिए मैं पहला ईमेल

पास आया है बुशरा रेहान का। वो लिखती हैं कि गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड कल्पना, जैसा कि आज का प्रश्न है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे क्या होता है कि माइल्ड एंड फेवरेट म्यूज़िक सुनना पसंद है। अच्छा, इन्हें गाने सुनना पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हम अच्छे अच्छे गाने सुनवाएंगे अपने कार्यक्रम में। नवीन भाटिया जी हैं, वो लिखते हैं, ये तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमें नियमित इनके मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, लिखते हैं कि पानी पी के एकांत में चले जाते हैं। नवीन कुमार जी और हैं, वो लिखते हैं कि मैं नवीन कुमार, मेरा मानना है कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ पल शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ और प्रतिक्रिया देने से पहले बहुत बार सोचता हूँ, इससे मेरा मन शांत होता है। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि कल्पना जी नमस्कार, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ देर शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दूँ, से जब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है तो बात भी नहीं बिगड़ती है। और चरणदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि क्रोध में मनुष्य अपना ही नुकसान करता है, मैं तो रेडियो सुनता हूँ और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बाद में पछतावा कर लेता हूँ। प्रेमलता सोनी है हमारे साथ, वो लिख रही हैं कि हम एक गिलास पानी पीते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं जहां हमें सुकून मिलता है। क्या बात कही है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं अफरोज़ शेख, वो बिहार से लिखते हैं, मुझे गुस्सा आता है तो मैं घर से बाहर चला जाता हूं, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही स्मिता पांडे हमें लिखती हैं कि शानदार जानदार प्रोग्राम और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमें ये भी लिखना है कि भाई आपको गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे शांत करती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ईमेल आया है, नाम है अस्मिता, वो लिखती हैं कि मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ और थोड़ी देर चुप रहती हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि बुशरा रेहान जी ने लिखा था कि भाई उनको मन जब शांत करना होता है तो वो गाना सुनती है, तो ये वाला जो गीत है ना, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए ताकि उनका मन शांत हो जाए।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, बहुत प्यारा सा गीत कि भई यूं ही तुम मुझसे बात करती हो सच्चा झूठा फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कई बार हमारी मुलाकात हो जाती है कांवड़ियों से, क्योंकि वो गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तो मुझे बस दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि गंगा जल की कांवड़ हाथों में भोले का नाम जपते हैं, राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो कांवड़िए हर हाल में हंसते हैं। और सावन का जो महीना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हम सभी करते हैं, और उनमें से एक कांवड़ यात्रा है। तो सावन की ऐसी कई कांवड़ यात्राएं चर्चा में हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस कांवड़ यात्रा ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, वो है महिला कांवड़ यात्रा। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाएँ समूह बनाकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं और नारी शक्ति का संदेश भी दे रही हैं। इसके साथ ही कई दिव्यांग श्रद्धालुओं ने व्हील चेयर, बैसाखियों या फिर कृत्रिम अंगों के सहारे यात्रा पूरी कर ये संदेश दिया कि भाई दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। इसके साथ हम बात करें तो पर्यावरण मित्र कांवड़ यात्रा को हम कैसे भूल सकते हैं। अनेक कांवड़ियों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने, कपड़े के थैले अपनाने और यात्रा मार्ग पर पौधरोपण व स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही हमारे जो कुछ कांवड़िए हैं, उन्होंने बताया क्या क्या है। उन्होंने रक्तदान और सेवा कांवड़ यात्राएँ भी करनी शुरू की हैं, जहां पर कई शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा के दौरान रक्तदान शिविर, निःशुल्क जल सेवा, चिकित्सा सहायता और भंडारों का भी आयोजन कर सेवा को ही शिव भक्ति बताया है। इसके साथ ही कुछ युवा जो हैं, वो युवा जागरूकता कांवड़ यात्राएं भी कर रहे हैं, जहां कांवड़ यात्राओं में बहुत से सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, बेटी शिक्षा और जल संरक्षण जैसे सामाजिक संदेशों वाली झांकियां विशेष आकर्षण बन रही हैं। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो भाई जो सावन की कांवड़ यात्रा है ना, वो केवल जल अर्पित करने की परंपरा नहीं है, बल्कि सेवा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और अटूट आस्था का भी एक प्रेरक उत्सव बनती जा रही है। साथ ही मन में ये आत्मविश्वास भी भरती है हमारे कि भाई अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हर काम आसान है।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत अभी जो आप सुन रहे थे तुम साथ हो जब अपने कालिया फिल्म से, और जिसे गाया किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ बच्चों की, बचपन की। तो मुझे एक शेर याद आता है कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो मेरे कहने से आपको करना क्या है, ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो बचपन जब आसमान में काले बादल छाते ही दिल खुशी से उछल पड़ता था, किताबें एक तरफ और कागज़ की नाव दूसरी तरफ। बारिश शुरू होते ही न छाते की चिंता होती थी न कपड़ों की, बस दोस्तों की टोली, गलियों में चप चप, पेड़ों से टपकती बूंदें और मिट्टी की सौंधी महक, यही तो बारिश का असली जश्न होता था हमारे बचपन का। फिर घर लौटते ही जब हमें माँ की हल्की सी डांट पड़ती थी कि देखो पूरे भीग गए, और उसी डांट के साथ हमें गर्मा गर्म पकौड़े या भुट्टा, मानो बारिश का स्वाद वहीं पूरा हो जाता था। बारिश तो दोस्तों आज भी होती है, लेकिन नज़ारे कुछ बदल से गए हैं। कागज़ की नावों की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है, दोस्तों की आवाज़ की जगह नोटिफिकेशंस की टन टन सुनाई देती है। बारिश बाहर बरसती है, लेकिन कई बार हम उसे खिड़की के शीशे के उस पार से ही देखते रह जाते हैं, खिड़की खोलना भी भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार बारिश के साथ अपने बचपन को भी थोड़ी देर के लिए वापस बुलाया जाए। बच्चों के साथ एक नाव बनाइए, कुछ बूंदों को हथेली पर गिरने दीजिए, भीगी मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए और कुछ यादें फिर से जी लीजिए। क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ना, वो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बारिश ये यादों के बंद दरवाजे भी खोल देती है।

श्रोताओं, अभी आप खूबसूरत सा जो गीत सुन रहे थे वो सुन रहे थे एक फूल दो माली फिल्म से, और जिसे गाया था आशा भोसले जी से, वो आशा भोसले जी ने गाया था ये, उनकी मधुर आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। और अब हम बढ़ेंगे आगे अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने अपने श्रोताओं से जो एक प्रश्न पूछा था कि भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा जो है गुस्सा कैसे शांत करते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारे अपने उपाय लिख के भेजे हैं, तो उनमें से कुछ ईमेल्स मैं पढ़ देती हूँ। हमारे पास वैभव सिंह जी का ईमेल आया है प्रयागराज यूपी से, वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर भी गुस्सा शांत हो जाएगा, पर मुझे जब गुस्सा आता है मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ, और मेरी माँ की आवाज़ सुनकर मेरा सब गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही हमें महेश अग्रवाल जी भी ईमेल करते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं पानी पीता हूँ और गाने सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। स्मिता पांडे जी का मुझे ईमेल मिला है, वो लिखती हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं जो प्रवचन होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, उनको सुनती रहती हूँ तो मेरा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का ईमेल आया है, जो हमें रोज़ाना ईमेल करते हैं, और वो लिखते हैं कि कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको, और मुझे किसी बात पर अगर गुस्सा आता है तो फिर मैं उस दिन बात नहीं करता, दूसरे दिन खुद ही माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर सब कुछ सही हो जाता है। ऐसे ही एक ईमेल आया है हमें बबली सिंह का, वो लिखती हैं कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं फ़ोन को साइलेंट करके म्यूज़िक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सुनते हुए सो जाती हूँ, जब मैं उठती हूँ तब तक मेरा जो मूड होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ईमेल करते रहें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और तब तक आप ये सुनिए खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म से, और जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। तो चलिए अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं खादी की, जो भारत की स्वदेशी परंपरा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में खादी को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि खादी आज केवल वस्त्र नहीं बल्कि देश के कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। इसके साथ ही पिछले वर्षों में खादी की जो बिक्री है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लाखों बुनकरों और ग्रामीण परिवारों की जो आय है वो भी बढ़ी है। उन्होंने गुजरात के कच्छ के कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वे पारंपरिक हस्तकला को आधुनिक बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से बात करी और कहा कि वोकल फॉर लोकल का संकल्प अपनाएं और खादी व स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता दें, और यही कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति देता है। तो आइए हम भी बढ़ाते हैं एक कदम स्वदेशी की तरफ और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते हैं। फिलहाल इस प्यारी सी जानकारी, इस अच्छी सी जानकारी और इस ज़रूरी जानकारी के बाद मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारा सा गीत नौकर फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले।

नौकर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। बातें करने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही पीएम यशस्वी योजना की। पीएम यशस्वी का पूरा नाम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया है। ये योजना ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी, एनटी और एसएनटी वर्ग के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इससे जुड़ने के लिए आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी के माध्यम से किया जाता है। पोर्टल पर पंजीकरण कर PMYASASVI यानी PMYASVI योजना का चयन करें। आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें और सत्यापन के बाद जो पात्र विद्यार्थी होंगे, जिनकी पात्रता होगी, जो योग्य होंगे, उनको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। याद रखें, ये जो योजना है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवा सक्षम होंगे तभी तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो आइए इन्हीं भावों से भरा हुआ एक गीत सुनते हैं, आन मिलो सजना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, देखिए हमारे अन्य दोस्तों ने भी हमें ईमेल किया है, जिसमें से एक हैं प्रद्युम्न वर्मा। वो लिखते हैं कि मुझे जिस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, मैं उस व्यक्ति के लिए अपने दिल की जो छिपी हुई बात है उसको पेपर पे लिख लेता हूँ और फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपूर्व पांडे हमें लिखते हैं श्रीनगर से कि मुझे गीत सुनवा दीजिए, तुम मुझे यूँ बुला ना पाओगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे FM गोल्ड पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिन पे आप जो है अपनी फरमाइश का गीत सुन सकते हैं, लेकिन ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ पर तो जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं आपको उसका उत्तर देना होता है। तो आइए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे बात करते हैं थोड़ी घूमने की, कि अगर इस मानसून आपका मन कुछ नया देखने, खरीदने और भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगने का है, तो आपके लिए लगा हुआ है दस्तकार मानसून मेला 2026। ये मेला 6 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक नोएडा हाट में आयोजित किया जा रहा है। मेले का समय है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपनी हस्त निर्मित कलाकृतियाँ लेकर आए हैं। यहाँ आपको हाथ से बुने वस्त्र, पारंपरिक आभूषण, मिट्टी, लकड़ी और बाँस से बनी सुंदर वस्तुएँ, घर की सजावट का सामान, लोक चित्रकला और अनेक राज्यों के जो स्वादिष्ट पकवान है ना, वो भी आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये केवल खरीदारी का मेला नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध कला संस्कृति और कारीगरों के अद्भुत हुनर को करीब से देखने का मौका भी है। तो इस मानसून अपने परिवार और दोस्तों के साथ दस्तकार मानसून मेले का आनंद ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर हस्तनिर्मित वस्तु सिर्फ एक उत्पाद नहीं होती, बल्कि किसी कारीगरों के सपनों, मेहनत और हुनर की कहानी भी कहती है।

श्रोताओं, अभी अभी प्यारा सा गीत सुन रहे हैं चोर मचाए शोर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक

के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के आज के सफर की साथी हूं मैं, यानी मनीषा बोस। तो मेरे सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिल्मी सफर के उस दौर में लिए चलूंगी जब फिल्में रिलीज के समय शोर नहीं मचाती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ अपने गीत, अपने किरदार और अपनी कहानी में छिपे संदेश से हमेशा के लिए दिलों में बस जाया करती थी।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 1958 से 1960 का जो काल रहा वो भारतीय फिल्मों के स्वर्ण युग का समय था, जब परिपक्वता के साथ सामाजिक यथार्थ, तकनीकी भव्यता और बेहतरीन संगीत इस काल की फिल्मों की पहचान बने, मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने वाली फिल्में बनी। और आज की फिल्म भी कुछ ऐसी ही है, 1958 में प्रदर्शित अमरदीप, उस दौर की संवेदनशील रोमांटिक कहानियों में से एक, जहां प्रेम की परिभाषा त्याग, धैर्य और विश्वास की कसौटी पर खरी उतरती थी। निर्देशक टी प्रकाश राव की फिल्म अमरदीप उनके ही तमिल क्लासिक अमरा दीपम का हिंदी रूपांतरण रही, जिसकी मूल प्रेरणा जेम्स हिल्टन के प्रसिद्ध उपन्यास रैंडम हार्वेस्ट से ली गई। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, भावनाओं का, गलतफहमियों का और याददाश्त चले जाने से जिंदगी में आई चुनौतियों से जूझते हुए फिल्म की कहानी त्याग समर्पण के मर्म को उभारती है। तो आइए आज अमर रोशनी का आगाज करते हैं फिल्म अमरदीप के इस गीत से।

0: देख हमें आवाज न देना। हमने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से साथियों आवाज तो दी है, और ये खूबसूरत सा गीत अमरदीप फिल्म जो 1958 में आई उसका एक बेहद ही सदाबहार युगल गीत रहा, जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया। राजेंद्र कृष्ण ने इसके गीत लिखे थे और संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। इस खूबसूरत गीत को आज भी जब हमारे श्रोता साथी सुनते हैं तो उनका दिल झूमने पर मजबूर हो जाता है। और आज की हमारी ये खूबसूरत फिल्म जो है आकाश अमरदीप, इसकी जानकारी हम आपको देंगे अपने एक ही फिल्म से के कार्यक्रम में, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं ये संदेश।
1: Hey girls!
2: Hi, congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर और आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है आज का एक ही फिल्म से, और आपके साथी हूँ मैं मनीषा। तो आप हमें कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल ना भूलिए, और ये बताने के लिए जो रास्ता है आपके पास वो है हमारा मेल indraprasthdelhi@gmail.com, iprradiodelhi@gmail.com। आपको इस पर हमें बताना है अपने संदेश भेज करके आपको क्या जानकारी और चाहिए इस फिल्म से जुड़ी हुई, और फिल्म के ये गीत आपको कैसे लग रहे हैं जो आज के कार्यक्रम में शुमार है। शिवाजी प्रोडक्शन की शुरुआती हिंदी प्रस्तुति थी उसमें से एक ये फिल्म रही। फिल्म के छायांकन की जिम्मेदारी संभाली थी प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर ए विंसेंट ने, और कहानी में याददाश्त खो जाने के यानी स्मृति लोप के विषय को दर्शाना उस दौर की जो लोकप्रिय और संवेदनशील पटकथा का एक अंदाज था, जो शैली थी उसी का ही एक रूप था। तो चलिए हम सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा जो आपको ज़रूर पसंद होगा। याद दिलाते हैं उस दौर की आपको।

0: निश्चित रूप से अमरदीप का ये खूबसूरत सा गीत हमारे बहुत सारे सुनने वाले श्रोता साथियों को पसंद है और हमारे बहुत सारे सुनने वाले लिसनर्स जो हैं उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश देवांगन जी, उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे एक श्रोता साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि एक फिल्म की जो कहानी है और उसके जो गीत हम सुनते हैं तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की फिल्मों से हमें वो आनंद नहीं मिल पाता है। और ये लिखने वाले हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। और एक ही फिल्म सुनने वाले हमारे अगले श्रोता साथी हैं इस कार्यक्रम को और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, अमरदीप की जानकारी अच्छी लग रही है। और ये श्रोता साथी हैं हमारे दिग्दर्शन गौर मेरठ कैंट से और इनके साथ हैं कविता गौर। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र छीपा, इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ये जानकारी भी अच्छी लग रही है। और 1958 की फिल्म का वो दौर इन्हें याद आ गया है और बोलते हैं कि इसमें जुड़े हुए जो किस्से कहानियाँ और नगमे हैं ये इस कार्यक्रम के द्वारा ही हम बेहतर तरीके से आनंद उठा पाते हैं, वरना आजकल पुराने गीत कहाँ सुनाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने सच कहा कि पुराने गीतों के लिए, इसलिए हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम और ऐसे गीतों की माला लेकर आते हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोम दत्त हैं ये हैं पटियाला पंजाब से, इनके साथ हैं ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। बहुत शुक्रिया। और कमलकांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए। और चूंकि हम आज की फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं, अमरदीप, और ये फिल्म 1958 में आई थी जिसमें मुख्य भूमिका में हमें नज़र आए थे देवानंद, अशोक के रूप में वैजयंती माला थी जो अरुणा के किरदार में थी, पद्मिनी थी रूपा के किरदार में और प्राण प्रमुख भूमिकाओं में दिखे, जिसकी कहानी एक संपन्न घराने की युवती अरुणा से शुरू होती है और वो अपने गुस्सैल और अंकुश में कसने वाले मंगेतर यानी कि प्राण से बचने के लिए अपना घर छोड़ देती हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अशोक नाम के युवक से, जिससे आगे चलकर अरुणा को प्रेम हो जाता है, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से अशोक की याददाश्त चली जाती है और फिर यहीं से कहानी भावनाओं और संघर्षों के सैलाब के साथ आगे बढ़ती है। तो चलिए हम सुनते हैं फिल्म का अगला गीत।
1: से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ये ऐसी चीज है भाई। लेने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो

0: ये दौलत है बीमारी पर लागे सबको प्यारी, ये दौलत है बीमारी पर लागे सबको प्यारी, इसकी खातिर किसी न पगड़ी किसी न बीवी हारी।
1: बीवी बिहार गया बेचारा।

0: निशान यही है करे यही मुँह काला।
1: हाँ, मुँह भी तो काला होता है।
0: करे यही मुँह काला, कलयुग में तो इससे बढ़कर कोई बड़ा अवतार नहीं, कोई बड़ा अवतार नहीं। देने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं। इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो पैसे का यार नहीं।
2: अभिनेता देव आनंद अपने सहज, संवेदनशील और आकर्षक अभिनय के साथ अशोक के किरदार में इस फिल्म में भावनात्मक ताना बाना बुनते हुए नजर आते हैं। वहीं अभिनेत्री वैजयंती माला अरुणा के रूप में अपने आत्मसम्मान का परिचय देती हैं और प्रेम की दृढ़ता का सुंदर रूप अपने अभिनय में साकार करती हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना अभिनेत्री पद्मिनी रूपा के किरदार में सादगी और करुणा का रूप बनकर आती हैं, जबकि प्राण अपनी दमदार भूमिका में कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही दोस्तों संगीतकार सी रामचंद्र का संगीत और राजेंद्र कृष्ण के बोल। भले ही ये फिल्म मुख्य धारा की चर्चाओं में कम रही, लेकिन फिल्म का संगीत संगीत प्रेमियों को आज भी रिझाता है। अगर अमरदीप के गीतों की सूची बनाई जाए तो उसके गीत के बोल आज भी उतने ही ताज़ा महसूस होते हैं। फिल्म का हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता हुआ बढ़ता जाता है। यही उस दौर के संगीत की सबसे बड़ी खूबी रही।

सच्चे दोस्तों की जीवन की असल रोशनी धन से नहीं अपनेपन से आती है, इसीलिए फिल्म अमरदीप ऐसा दीप जलाती है जो दिलों में सदा के लिए अमर हो। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि हिंदी सिनेमा की गरिमा, मधुर संगीत, उत्कृष्ट अभिनय और भावनात्मक कहानी का आनंद लेना है तो अमरदीप जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म तेज घटनाक्रम से नहीं बल्कि अपने पात्रों, अपने संवाद, अपनी कहानी और अपने गीत संगीत से दर्शकों के मन में जगह बनाती है। भले ही अपने दौर की बड़ी व्यावसायिक फिल्मों में ये शामिल नहीं थी, लेकिन फिल्म की कलात्मकता और

आशा करते हैं एक ही फिल्म से के इस सफर को आपने भी जिया होगा। आज फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा के एक और सुनहरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए एक ही फिल्म से के इस कार्यक्रम से मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्ते।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे।
1: आज के 50 मिनट ते उर्दू खबरें सुनोगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। संसद दे दोवां सदनां दी कार्रवाई नीट समेत कई मुद्दयां ते विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दुपहर 2 बजे तक मुलतवी कीती गई। खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा सोध बिल 2026 तहत किसी भी सूबे च लाभपात्री नूं अनाज वंड विच कोई कमी नहीं होवेगी। एनडीए संसदीय पार्टी दी हफ्तावारी मंगल मिलन मीटिंग संसद भवन विच जारी है। केंद्रीय खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली च विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 दे तमगा जेतुआं नूं सन्मानित कीता ते कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट अज दक्षिणी कोरिया च शुरू होया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। संसद दे दोवां सदनां दी कार्रवाई नीट मुद्दे उत्ते विद्यार्थियां दे विरोध प्रदर्शनां दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दयां ते विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दुपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई। पहली मुलतवी तों बाद जदों राज्यसभा दी कार्रवाई मुड़ शुरू होई तां सभापति सीपी राधा कृष्णन ने हंगामे दौरान प्रश्नकाल चलाउण दी कोशिश कीती। कुछ मैंबरां ने सवाल पुछे जिन्हां दे जवाब मंत्रियां ने दित्ते। हालांकि विरोधी धिर दे लगातार हंगामे कारण सदन दी कार्रवाई दुपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई। इस तों पहलां राज्यसभा विच वी अजिही स्थिति बनी जदों सवेरे सदन दी कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तां मंत्रियां ने दस्तावेज़ मेज़ ते रखे। आवास ते शहरी मामलों बारे संसदीय स्थाई कमेटी दी रिपोर्ट सदन च पेश कीती गई। सभापति सीपी राधा कृष्णन ने विरोधी धिर दे हंगामे दौरान सिफरकाल शुरू कीता। विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर तों दान दी कथित चोरी दा मुद्दा उठाया। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या विच राम मंदिर दा विरोध करन वालियां कांग्रेस ते समाजवादी पार्टी हुण दान दी कथित चोरी ते नाटक रच के जनता नूं गुमराह करन दी कोशिश कर रही ने। उन्हां कहा कि लोग देश नूं गुमराह कर रहे ने ते देश तों माफी मंगनी चाहीदी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सदन सारयां दा है ते मुख विरोधी कांग्रेस दी निर्धारित समय दी दुरवरतों कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
2: इस मुद्दे ते लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अज सवेरे जदों सदन शुरू होया तां स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की थी, पर विरोधी धिर के मैंबरां ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विरोधी धिर के मैंबर प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से गृहमंत्री अमित शाह तो बयान की मांग कर रहे सन। श्री बिरला ने सारे मैंबरां नूं सदन के सुचारू कामकाज में सहयोग करने की अपील की थी। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने कल कार्ज सलाहकार कमेटी की मीटिंग दौरान सारियां राजनीतिक पार्टियां नूं अपील की सी अते इस गल ते जोर दिता सी कि संसद लोकतंत्र दा सर्वोच्च मंच है जो चर्चा अते गलबात लई है। स्पीकर ने कहा कि संसद नारेबाजी जां तख्तियां चुकन दा मंच नहीं है।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ते होर विरोधी पार्टियां उत्ते संसद दे मानसून अजलास विच विघन पाउण दा इल्जाम लगाया। बीजेपी दे राष्ट्र बुलारे संबित पात्रा ने अज सवेरे नवी दिल्ली च पत्रकारां नूं दस्या कि कांग्रेस ते उसदे सहयोगियां ने प्रश्नकाल ते सिफरकाल दौरान हंगामा कीता। उन्हां इल्जाम लगाया कि विरोधी धिर ने नागरिकां दे हित विच दोवां सदनां च सफलतापूर्वक पास होए महत्वपूर्ण बिलां ते चर्चा विच हिस्सा नहीं लिया।
4: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
2: खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा सोध बिल 2026 तहत किसी भी सूबे च लाभपात्री नूं अनाज वंड विच कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अज राज सभा विच प्रश्नकाल दौरान पूरक सवालों के जवाब दिंदिया यह जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि बिल के खरड़े ते राज सरकारां तों टिप्पणियां ते सुझाव मंगे गए सन। इस बिल का उद्देश्य बराबर वंड नूं यकीनी बनाउणा, योग्यता विच इकसारता लियाउणा ते मौजूदा प्रणाली तों पैदा होण वालियां खामियां नूं दूर करना है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ NDA ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਐ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਲੀ ਏ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਖਨਨ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਖਤਿਆਰ ਸਦੋਵ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਡਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ

0: टरबाइन ईंधन की बरामद से विशेष वाधू आबकारी ड्यूटी विच सोध की है। सरकार ने अगले 15 दिन नवीं दरां नोटिफाई करदिआं कहा कि डीजल उत्ते बरामद ड्यूटी हुण 25.50 रूपये प्रति फी लीटर होगी, जबकि एटीएफ से बरामद ड्यूटी वधा के 22 रूपये प्रति लीटर कर दी गई है। केंद्रीय युवा मामलों के खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली च विश्व जूनियर स्कैश चैंपियनशिप 2026 के तमगा जेतुआ सम्मानित किया। तमगा जेतुआ विच भारतीय मर्दां दी जूनियर टीम दे सोने दा तमगा जेतु अनाज सिंह अते कांसी तमगा जेतु आर्यवीर दीवान युषा नसीफ अते गुरबीर सिंह शामिल ने। इस मौके डॉ मांडविया ने नौजवान खिडारियां नूं अपनी सफलता जारी रखने लई उत्साहित किया। एशियाई खेडां 2026 ते ओलंपिक खेडां 2028 लई उन्हां दीआं तैयारियां वास्ते शुभकामनावां दित्तियां ने। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिणी कोरिया के आसन विच शुरू होया। भारत के तुषार सुवी जापान के शोगो ओगावा तो हारन तो बाद मर्दां दे सिंगल्स मुकाबले तो बाहर हो गए ने। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स विच भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु ते उन्नति हुड्डा हिस्सा नहीं लै रहे। मर्दां दे डबल्स की चोटी की जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी टूर्नामेंट विच हिस्सा नहीं लै रहे। यह टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तों। संसद के दोवें सदन की कार्रवाई नेट समेत कई मुद्दों से विरोधी धिर वलों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हुई। खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा सोध बिल 2026 तहत किसी भी सूबे या लाभपात्री नूं अनाज वंड विच कोई कमी नहीं होगी। एनडीए संसदीय पार्टी की हफ्तावारी मंगल मिलन मीटिंग संसद भवन च जारी। केंद्रीय खेड मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नवी दिल्ली च विश्व जूनियर स्कैश चैंपियनशिप 2026 के तमगा जेतुआ सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट अज दक्षिणी कोरिया के आसन च शुरू होया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। अपोजिशन मेंबरों की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर दोनों ऐवानों में रुकावट डालने की वजह से पार्लियामेंट में तातुल जारी है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है क्योंकि बड़े दरियाओं के पानी की सतह कम हो रही है। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को मुतनाज़ रिमार्क की वजह से पुलिस तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग जिले में नहते अफराद पर पाकिस्तानी फौज के गोली चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। अबनाए हुरमुज में जहाजों पर फिर से हमले की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इनमें नीट के सवाल पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला भी शामिल था। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो शोर शराबे के दौरान चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू किया। कई अराकीन ने सवालात पूछे और वजीरों ने उनके जवाब दिए। ताहम अपोजिशन मेंबरों के एहतजाज और नारेबाजी की वजह से चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीरों ने ऐवान में जरूरी दस्तावेजात पेश किए। मकानात और शहरी उमूर के बारे में पार्लिमानी कायमा कमेटी के महकमे से वाबस्ता रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। इसके बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने शोरगुल के दौरान वक्फे सिफर की शुरुआत की। हिजब इख्तलाफ के रहनुमा मलिक अर्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत कर रही हैं अब मुबैना चढ़ावे की चोरी का मामला उठाकर आवाम के सामने ड्रामा करके उन्हें गुमराह कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें मुल्क से माफी मांगनी चाहिए।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन मेंबर मुबैना पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने सभी अराकीन पर जोर दिया कि वह ऐवान चलाने में ताउन करें और कहा कि सवालों के वक्फे के दौरान खलल डालना मुनासिब नहीं है। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट नारेबाजी या कतबे लाने का प्लेटफार्म नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास की कार्रवाई में रखना डालने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में आज सुबह नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सवालों के वक्फे के बाद भी ऐवान में शोरगुल कर रही हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आवाम के फायदे के लिए मंजूर किए गए अहम बिलों पर होने वाली बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया। इन बिलों में पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 भी शामिल है। बीजेपी के तर्जुमान ने यह इल्जाम भी लगाया कि पार्लियामेंट के मकर द्वार पर एहतजाज करके अपोजिशन हिंदुओं और हिंदू सनतों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि झारखंड में हजारों तलबा एहतजाज कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनकी हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिससे जाहिर हो जाता है कि वो पेपर लीक जैसे मामलों में अलग अलग मौकिफ अख्तियार कर रही है। कौमी जमहूरी इतिहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है, आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और दीगर रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इतिहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, क्योंकि महानदी और दीगर बड़े दरियाओं का पानी मुसलसल कम हो रहा है। इसके बावजूद सैलाब से शदीद तौर पर मुतासरा गांव में हजारों अफराद अब भी पानी भर जाने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आइंदा 2 दिन के दौरान मजीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में सैलाब के बाद की सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है, क्योंकि पीर की रात से महानदी दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे जगत सिंहपुर जिले की कई गांवों को जज़वी राहत मिली है। ताहम नशीबी इलाकों से पानी मुकम्मल तौर पर ना निकलने के बायस बहुत से कुनबे अब भी बेघर हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत के 7 जिलों में शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है और आइंदा 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की है। मयूरभंज जिले में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को उनके एक मुतनाज़े बयान पर पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई कल DMK की किसानों की एहतजाजी रैली में कावेरी आबी तनाज़ो पर उनकी तकरीर के बाद की गई है। ये मामला थंजौर की एक खातून की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तकरीर में खवातीन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती हुई बदअमनी के दौरान मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाग ज़िले में निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने यह दावा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़मीनी सतह के मनाजिर की वीडियो जारी करते हुए किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच

0: के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
5: उनका ये विरोध

0: भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
2: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और 12 सेकंड और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है। जी हाँ, एक ही कलाकार प्रोग्राम का। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
6: प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हम उस महान कलाकार को जिनकी आवाज आज भी हर दिल की धड़कन में बसती है, जिनकी हंसी में शरारत थी, जिनकी उदासी में गहराई थी और जिनकी गायकी में भावनाओं का अथाह समंदर था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अमर गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और बेमिसाल मनोरंजनकर्ता किशोर कुमार, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जी, 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ढेर सारी बातें होंगी और इन्हीं के गीत खूबसूरत से आप तक पहुंचाऊंगी, और आप भी सफ़र में हमेशा की तरह हमारे हम सफ़र बन सकते हैं मेल के ज़रिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो बस बन जाइए इस खूबसूरत से सफ़र में हमारे हम सफ़र।

जी हाँ, आज भी हम उतना ही प्यार करते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ को जो उस दौर में करते थे। आभास कुमार गांगुली जी, यही नाम था किशोर कुमार का, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। अशोक कुमार और अनूप कुमार पहले से ही फिल्मों में थे, ये दोनों इनके भाई हैं, लेकिन किशोर दा ने अपनी अलग जगह बनाई और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। कहते हैं कि किशोर कुमार ने कभी औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा ली ही नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ में जो जादू था वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है, जो महसूस कर रहे होंगे आप इन गीतों को सुनकर। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इनकी आवाज़ में।

फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसमें ये तीनों भाई नजर आए थे। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वे पूरे के पूरे मनोरंजन का नाम थे। रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी शरारतें और उनके जो अनोखे अंदाज के जो किस्से हैं वो आज भी मशहूर हैं। कभी योडलिंग, कभी हंसी, कभी दर्द, हर रंग उनकी आवाज़ में सुनाई देता है। 1969 में एक फिल्म आई थी, नाम था आराधना। उनकी गायकी इस फिल्म से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस फिल्म के गीत आपको याद होंगे, रूप तेरा मस्ताना, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिलहाल तो हम आपको ये वाला गीत सुनवाते हैं, उसके बाद इसी गीत से जुड़ा एक किस्सा भी आपसे शेयर करेंगे। सुनिए इस खूबसूरत से गीत को।

किशोर दा का गाया ये गाना, जो कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था, ये गाना 3.5 मिनट का था और आपको बता दूं कि ये सिंगल शॉट में शूट किया गया था। स्टार्स को सिर्फ ये समझाया गया था कि उनको क्या करना है, ना उनको वक्त दिया गया रिहर्सल करने का और ना ही इस गाने के ज़्यादा टेक हुए। गाना शूट किया और उसके बाद इस गाने ने धमाल मचा दिया। शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म आराधना में किशोर साहब ने सिर्फ 3 गाने, कुल 3 ऐसे गाने गाए थे, जिसमें था एक सपनों की रानी, कोरा कागज था, ये मन मेरा, और तीसरा था रूप तेरा मस्ताना। ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि किशोर दा को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और यहीं से उनके स्टारडम की भी शुरुआत हुई थी।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक अनेक सितारों की आवाज बनकर दर्शकों का दिल जीता। हर अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुसार वे अपनी गायकी का रंग बदल देते थे।

0: फिल्म मंजिल से अभी आप एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे हैं। अगर खुशी का गीत हो तो किशोरदा, अगर प्यार का इजहार हो तो किशोरदा, और अगर दिल टूटने की कहानी हो तब भी किशोर कुमार। किशोर कुमार को प्रकृति और अपने जन्म स्थान खंडवा से बहुत लगाव था। वे अक्सर कहा करते थे कि एक दिन वे वापस खंडवा जाकर सुकून की जिंदगी बिताएंगे। 70 और 80 का दशक किशोर कुमार के नाम रहा। लगभग हर बड़े संगीतकार ने उनकी आवाज़ का भरपूर उपयोग किया और उन्होंने हजारों गीतों को अमर बना दिया। किशोर कुमार जितने मस्तमौला थे उतने ही संवेदनशील भी थे। यही कारण है कि उनके दर्द भरे गीत आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अगला गीत हमने लिया है वो गीत है जिसने भी धमाल मचाया था फिल्म डॉन से। तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते थे, सुनिए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

0: बंद अकल का ताला।
1: आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं। दादा बाबू रोड गिरीहिट झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान साइमा जी परिवार के साथ हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु निरंजन, सौम्या हमारे साथ हैं। गुरनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति जी पदमपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ हैं। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद पराग पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल जी हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा से पंजाब से मिंचू टॉमस पिंकी लवली जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं। चिरमिरी कुलासिया कार्ड से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ जी हमारे साथ हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये संदेश हमारे पास कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा से अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा जी का है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमीला जी हमारे साथ हैं। जिरा हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी और नंदा बोखड़े जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश जो है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी का है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार जी जुड़े हुए हैं। और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं। दिल मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ हैं। खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज और आयुषी जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम अशफाक और अफरीन जी का आया हुआ है। और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे सफ़र में हम सफ़र बने हैं। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम कुछ देर में शामिल करेंगे। फिलहाल आपसे हम चलते चलते यही कहेंगे कि आवाज़ें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए अमर भी हो जाती हैं। किशोर कुमार उन्हीं अमर स्वरों में से एक हैं। उनकी गायकी ने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया और ज़िंदगी को खुलकर जीने का अंदाज़ भी दिया। तो अब इन्हीं के साथ कहने के लिए तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं किशोरदा के जो मेरा मन कर रहा है आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन वक्त की पाबंदी है। फिलहाल एक और मैंने खूबसूरत सा गीत चुना है किशोरदा की आवाज़ में। उस गीत को सुनिएगा और उसके बाद फिर किसी मोड पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और हाँ, आपसे बता दूं कि आप 3 बजे का जो प्रोग्राम है उसको सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपके लिए ऐसे गाने चुन चुन के लेकर आते हैं जो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। तो फिर आपसे मैं अनुमति लेती हूँ, इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप जानते हैं कि ये समय होता है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। जी हाँ, 1950 और 60 के दशक के उस दौर के गीत हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं आपके लिए, जो हमेशा हिट थे, हैं और रहेंगे। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। तो आपको लिए चलते हैं फिर से उसी दौर में, बॉलीवुड का एक वो दौर जहाँ एक तरफ सीधी सादी और शर्मीली हीरोइन का राज था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी अदाकाराएं भी थीं जिनकी एक चालाक मुस्कान और कातिलाना अदाएं पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती थी। जी हाँ, हम बात करेंगे उस दौर की कुछ ऐसी फीमेल विलेंस की और बेम्स की, जिन्होंने पर्दे पर अपनी खलनायकी का ऐसा जादू चलाया कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

तो सबसे पहले हमने जिनको चुना है वो है 50 के दशक में नादिरा जी, पर्दे पर एक ऐसी मॉडर्न मगर चालाक औरत की छवि जो अपनी एक सिगरेट की फूंक से बड़े बड़े शूरवोरों को नचा सकती थी। 1955 की राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 में उनका किरदार माया का था, जो कि बेम थी। आज भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे आइकॉनिक खलनायिकाओं में इनको गिना जाता है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, इन पर पिक्चराइज ये सुपरहिट सॉन्ग।

0: देख मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

और अब जो हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, आप पहचानिए कि ये गीत किसके ऊपर पिक्चराइज किया गया था। हम जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी अदाकारा थी कि कई सारी फिल्में ऐसी थी जो इनके बिना अधूरी सी फील होती हैं। लगता है कि अगर ये नहीं होती या इनके ऊपर अगर कोई गाना नहीं पिक्चराइज किया गया होता तो इस फिल्म में मज़ा कैसे आता। तो सुनिए इस गीत को और अपने संदेश के जरिए बताइए कि ये गीत किस खलनायिका के ऊपर, खलनायिका भी कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी एक साइड हीरोइन भी कह सकते हैं, जल्दी से बताइएगा।

1966 की ब्लॉकबस्टर फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत आप सुन रहे थे, जो कि हेलन पर फिल्माया गया था। और आज जब भी ये गीत बजता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ, हेलन जी के कैमरे डांस और उनकी कातिल अदाओं से ब्लेन के किरदार में ऐसा उन्होंने ग्लैमर भरा जो हर फिल्म की जान बन गई। 60 के दशक में अगर ब्लेन के अड्डे पर कोई सस्पेंस भरा गाना बजता था तो पर्दे पर हेलन का होना तय था। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही खतरनाक सांस से। अंदाज शायद आप लगा चुके होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। 1950 और 60 के दशक में क्रूर सास, चालाक मौसी या सौतेली माँ का किरदार अगर किसी ने अमर किया तो वो थी ललिता पवार। 1959 की फिल्म अनाड़ी में उनका श्रीमती डिसूजा का किरदार हो या फिर बाद की फिल्मों में कड़क सास का रूप हो, उनकी एक उठी हुई भौं

60 के दशक में क्रूर सास, चालाक मौसी या सौतेली माँ का किरदार अगर किसी ने अमर किया तो वो थी ललिता पवार। 1959 की फिल्म अनाड़ी में उनका श्रीमती डिसूजा का किरदार हो या फिर बाद की फिल्मों में कड़क सास का रूप हो, उनकी एक उठी हुई भौं ही काफ़ी थी माहौल में तनाव पैदा करने के लिए। तो हमने चुना है इनकी फिल्म परवरिश से, इनके ऊपर फिल्म आया ये खूबसूरत सा गीत।

करे

जी हाँ साथियों, 50 और 60 के दशक में खलनायकी का सिर्फ एक रूप नहीं था। एक तरफ जहाँ ललिता पवार की जैसी जो अभिनेत्रियाँ थीं वो पारिवारिक साजिशों की मलिका थीं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे पर राज करती थीं ग्लैमरस बेम्स। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हेलन का और उसके बाद शशिकला का। शशिकला की बात करें तो 1962 की फिल्म आरती हो या फिर 1963 की गुमराह, उन्होंने अपनी चालाकी भरा किरदार इतने शानदार ढंग से निभाया कि दर्शक उनसे नफरत भी करते थे और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी। वहीं उनकी जब अदाकारी पर्दे पर आती थी तो एक डर भी दिल में समा जाता था। सुनते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज़ ये खूबसूरत सा गीत।

अरे हाँ,

और अब हम आपको मिलवा रहे हैं चुलबुली, लेकिन खतरनाक। जी हाँ, अरुणा ईरानी, इनकी खासियत ये थी कि वे अपने चुलबुले और हंसमुख अंदाज से कभी पीछे चालाकी भरा चेहरा छिपा लेती थी, जिससे उनका जो नेगेटिव रोल था वो भी एक अलग ही लगता था। और उसके ऊपर उनका डांस, फिल्म कारवा ले लीजिए, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से मुख्य हीरोइन जो थी उसको भी टक्कर दी है। हमने चुना है उन्हीं के फिल्म में, उनके ऊपर फिल्माया फिल्म अनोखी रात से ये खूबसूरत सा गीत।

और अब इन सबके बीच में बात करते हैं बिंदु की। मोनिका और शबनम की पहचान अगर है तो नाम आ जाता है बिंदु का, जिनकी तीखी नजरें, सिगरेट पीने का अंदाज और डायलॉग डिलीवरी पर्दे पर ऐसा खौफ पैदा करती थी कि दर्शक उनके किरदार से नफरत करने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने सिर्फ डिस्को या ब्लेन के अड्डे तक सीमित ना रहकर फिल्म दो रास्ते जैसी फिल्मों में चालाक और घर तोड़ने वाली बहू के किरदार को भी निभाया है। सुनते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज एक गीत।

बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन बीना, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित जी हमारे साथ हैं, सनावद से शेख मूसा मोहसिन जी हमारे साथ हैं और अजीत भापसर जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैद अब्बासी जी चौक ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हैं, डीवी राणा जी नेहरू बयार दिल्ली से हैं, सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं, देवशंकर तामुरिया जी कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं और इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। उसके बाद अगला जो संदेश है वो अजीत भापसर जी का ही हम तक पहुँचा है और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपको बता दें कि आप आज शाम 4:15 पर सुनेंगे युवाओं का प्रोग्राम युववाणी। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी हर रोज की तरह आप आनंद लेंगे शाम 5:30 पर। और उसके बाद लोक संगीत जो हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:10 पर। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके लिए हम हर रोज़ लेकर आते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है 3:30। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली और इसके गिर्दोनवाह में मुनक़िद होने वाले सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, शेरी नशिस्तों और मुशायरों से मुतालिक आप सुनेंगे हमारी खास रिपोर्ट। नीज अदबी शख्सियात को मिलने वाली एजाजात, किताबों की रस्म इजरा और दीगर अदबी व इल्मी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात से भी आप फैज़याब होंगे। लेकिन आज इस हवाले से बात करने से कबल आपको बताता चलूं कि आज चहलुम है, तो आइए पहले इसकी तारीख और अहमियत पर एक नज़र डालते हैं। सामीन, इस्लामी तारीख में बाज़ दिन ऐसे हैं जो महज तकवीम का हिस्सा नहीं होते बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झिझोड़ने वाले अबदी पैगाम बन जाते हैं। इन्हीं में से एक अहम दिन चहलुम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु है, जो हर साल 20 सफ़र को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 4 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके वफादार रफ़ाक़ा की बेमिसाल क़ुरबानी, इस्तेकामत और हक पसंदी को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। सामीन, सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने अहले खाना और जानिसार साथियों के साथ जुल्म, जबर और नाइंसाफी के सामने सर झुकाने के बजाय हक, इंसाफ और इंसानी वक़ार की खातिर अजीम क़ुरबानी पेश की। ये मारिका इख्तदार के हुसूल के लिए नहीं बल्कि उसूलों, अखलाकी अकदार और दीन इस्लाम की हकीकी रूह के तहफ़ के लिए था। इसीलिए करबला का पैगाम किसी एक ज़माने या एक कौम तक महदूद नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सर चश्मा है। चहलुम हमें ये एहसास दिलाता है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग उसूलों पर साबित कदम रहते हैं, तारीख उन्हीं को इज्जत और दवाम अता करती है।

हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें सब्र, इस्तेकामत, ईसार, बर्दाश्त और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। उनकी कुर्बानी ने यह हकीकत हमेशा के लिए वाज़े कर दी कि हक की हिफाजत के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो वह सौदा खसारे का नहीं बल्कि कामयाबी का है। समीन, चहल्लुम का दिन हमें अपने किरदार का जायजा लेने की दावत देता है। क्या हम इंसाफ का साथ देते हैं? क्या हम कमज़ोरों के हकूक़ का एहतराम करते हैं? क्या हम मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग देते हैं? अगर हम इन सवालों पर गौर करें तो यही चहल्लुम का हकीकी पैगाम है। आइए इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए इस अहद की तजदीद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, दयानत, इंसाफ, सब्र, बर्दाश्त और इंसान दोस्ती को फ़रोग देंगे, क्योंकि यही वो अकदार हैं जो एक पुरअमन, बावक़ार और बाअख़लाक़ मुआशरे की बुनियाद बनती हैं। अल्लाह ताला हमें वाक़े करबला के अबद पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।

आइए अब बात करते हैं उर्दू दुनिया के शबो रोज की। सामीन, गुज़श्ता दिनों गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम एक सालाना गज़ल सराई मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने इस्तक़बालिया कलिमात में कहा कि इदारे में कायम गालिब म्यूजियम उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की याद को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ अदबी व सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद करता है। उन्होंने बताया कि म्यूजियम की चेयरपर्सन मोहतरमा बेगम सबा की सरपरस्ती में हर साल गजल सराय का ये मुकाबला मुनक़िद किया जाता है। म्यूजियम की मैनेजर और प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा यास्मीन ने कहा कि गालिब इंस्टीट्यूट जहां आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों को मदऊ करता है, वहीं बच्चों की अदबी सलाहियतों को निखारने के लिए भी ऐसे मुकाबलों का एहतमाम करता है। प्रोफेसर आसिफ नकवी ने बच्चों को दुरुस्त तलफ्फुज़ और मेयारी जबान इख्तियार करने की तलकीन की, जबकि उस्ताद सईदुर

खान ने कहा कि कामयाबी के साथ नाकामी भी सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनती है। मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। समीन, गुज़श्ता दिनों इंतसाब पब्लिकेशन और सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम सैफी लाइब्रेरी में सेमाही इंतसाब आलमी के खसूसी अंजुम बाराबंकवी नंबर की रस्म इजरा के साथ एक बावक़ार अदबी नशिस्त और मुशायरे का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज सेमाही इंतसाब के मुदीर सैफी सरौंजी के खैर मुकदमी कलिमा से हुआ, जबकि कलीदी खुतबा मारूफ अदीब डॉक्टर महताब आलम ने पेश किया। उन्होंने कहा कि अंजुम बाराबंकवी ने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब और इस्तेआरों को नहायत खूबसूरती से बरता है। अंजुम बाराबंकवी पर यह पहला बाकायदा अदबी प्रोग्राम तारीखी शहर सरौंज में मुनक़िद हो रहा है, जो इस शहर की अदबी तरक्की का सबूत है। सदारती खिताब में MW अंसारी ने कहा कि इंतसाब आलमी का यह खसूसी शुमारा संजीदा मुताले का मुतकाजी है। रस्म इजरा के बाद एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी शुरा ने अपना कलाम पेश किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल।

सामीन, गुज़िश्ता दिनों आलमी योम उर्दू मुंतज़मा की मीटिंग माहिर इकबालियात प्रोफेसर अब्दुल हक की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें अल्लामा इकबाल के योम पैदाइश की मुनासिबत से 9 नवंबर को आलमी योम उर्दू के मौके पर उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ असनाफ और शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को आलमी उर्दू एवार्ड 2026 देने का फैसला किया गया। आलमी योम उर्दू मुंतजमा कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने बताया कि एवार्ड कमेटी ने इमसाल का लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड डॉक्टर इदरीस अहमद को देने का फैसला किया। डॉक्टर इदरीस अहमद तकरीबन 4 दहाइयों से उर्दू जबान व अदब की तरवीज व इशात में मसरूफ हैं। डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा कि मारूफ सहाफ़ी जलालुद्दीन असलम, सोहेल अंजुम और जावेद अख्तर पर मुश्तमिल एवार्ड कमेटी ने सहाफत, शायरी, उर्दू अदब और फारसी जबान व तहकीक नीज तालीम के मैदान में नुमाया खदमात के एतराफ़ में चंद दिगर शख्सियात को भी आलमी योम उर्दू एवार्ड देने का फैसला किया है। सामीन, गुज़िश्ता दिनों उर्दू अकादमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मीर तकी मीर की याद में अदबी व सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर विपिन गर्ग की मरतब करदा दीवान मीर के हिंदी एडिशन की इशाअत अमल में आई। तकरीब में मुल्क की मुमताज़ अदबी, इंतजामी और सकाफती शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मीर तकी मीर की शख्सियत, शायरी और अदबी खदमात पर एक इल्मी मुजाकरा और उनके कलाम पर मबनी महफिल गज़ल भी पेश की गई। तकरीब का आगाज दिल्ली हुकूमत के महकमे फ़न, सकाफत व अलसना के एडिशनल सेक्रेटरी और उर्दू अकादमी दिल्ली के सेक्रेटरी लेखराज के इस्तकबालिया कलिमा से हुआ। अपने खिताब में लेखराज ने कहा कि विपिन गर्ग ने दीवान मीर को हिंदी में मुरतब करके एक अहम अदबी खदमत अंजाम दी है, जिसके जरिए मीर की शायरी हिंदी कारीन के वसी हलके तक पहुँच सकेगी। उन्होंने कहा कि 3 सदियों बाद भी मीर का काम अपनी ताजगी, सादगी और असर अंगेजी बरकरार रखे हुए है और नई नस्ल के लिए भी यकसां तौर पर कशिश रखता है। दीवान मीर के हिंदी एडिशन के मुरतब व मुदीर विपिन गर्ग ने अपनी अदबी जद्दोजहद और इस किताब की तैयारी के पस मंजर पर तफसील से रोशनी डाली। विपिन गर्ग ने बताया कि उन्हें बचपन से शायरी से गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन मीर का मुकम्मल कलाम हिंदी में दस्तियाब न होने के बायस उन्होंने उर्दू अकादमी दिल्ली के सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेकर उर्दू सीखी और फिर मीर का असल कलाम पढ़ा। तकरीबन 20 बरस की मुसलसल तहकीक और मेहनत के बाद ये किताब मुकम्मल हुई।

सामीन गुज़श्ता दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने नामवर अदीब व मुसन्निफ़ प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी के मजामीन की किताब तरावश कलम पर एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद फारूकी ने की, जबकि नामवर स्कॉलर प्रोफेसर अहमद महफूज, डॉक्टर खालिद मुबशिर और मासूम मुरादाबादी ने मुज़ाकरे में हिस्सा लिया। सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर के कन्वीनर अंजुम नईम ने सेंटर के मकासद और इसकी संजीदा अदबी मसरूफियात पर रोशनी डाली। मुसन्निफ़ किताब प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी ने किताब के मवाद पर मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये काम उन मुंतशिर औराक को महफूज करने की कोशिश है जो अहम मौजूआत पर वक्तन फोक्तन लिखे गए। सदारती कलिमात पेश करते हुए प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद फारूकी ने उर्दू नसर में मुसन्निफ़ के तआवुन को सराहते हुए कहा कि उनके ये मजामीन अहले इल्म व अदब के लिए अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि तरावश कलम अदबी खूबसूरती और इल्मी सदाकत का इम्तिजाज है और मुसन्निफ़ के गहरे मुशाहदे और गहरी इंसानी फिक्र की अक्कासी करती है। इस मौके पर प्रोफेसर अहमद महफूज ने किताब को मुआसिर उर्दू अदब में एक अहम इजाफा करार दिया। उन्होंने मुसन्निफ़ के उसलूब को दिलफरेब और पुरखलूस बताया। उन्होंने कहा कि किताब कारी की मालूमात में इजाफा करती है और वो इसके मजामीन से लुत्फानंदोज होता है। मारूफ सहाफ़ी व मुसन्निफ़ मासूम मुरादाबादी ने तरावश कलम को उर्दू की अदबी और फिक्री जिंदगी के एक अहम दौर की दस्तावेज करार दिया। उन्होंने मुसन्निफ़ को इसकी इशाअत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये कारीन के लिए उनका एक बेशकीमत तोहफा है।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज। तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वीक 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मांग की है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री सीतारामन ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में आगे संशोधन करेगा। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रामाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मैजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को एक विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएम के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के एक विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विधिक मापन के लिए योग्य पॉलिटेक्निक संस्थानों, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और परीक्षण इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र नियम 2013 के अंतर्गत सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अंतर्गत किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि आवेदन इस महीने की 17 से 31 तारीख तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालिफायर मुकाबले

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वीक 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 4:10:22 हुए हैं। समय है गुमशुदगी से जुड़ी सूचना का। गुमशुदगी में ये पहला नाम है श्रीमती पूजा देवी का, जो पत्नी अजीत हैं। ये सेक्टर 22 थाना सेक्टर 24 नोएडा से लापता हैं। ये ग्राम चौड़ा सादतपुर सेक्टर 22 नोएडा की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष है और ये महिला हैं। इनके शरीर की बनावट इकहरा बदन है, कमर से थोड़ा टेढ़ापन है। इनका रंग गोरा है, नाक कान और इनका कद औसत है, लगभग 5 फुट। ये अपने पति से कहकर गई थी कि पैसा कमाने कहीं कंपनी में नौकरी करने गई हैं और उसके बाद से ये घर वापस नहीं आई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना सेक्टर 24 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना हिमांशी की है, जो डॉटर ऑफ धर्मवीर हैं और ये कस्बा कासना थाना कासना की रहने वाली हैं। ये 22 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 19 वर्ष है और ये महिला हैं। इनके शरीर की बनावट सामान्य है और इनकी ऊंचाई 4 फीट है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप एक नंबर है उस पर संपर्क साध सकते हैं। कृपया नंबर नोट करें, 8595902543। एक और नंबर है 7355070677। नंबर हिंदी में भी आप नोट कर सकते हैं, 8595902543। और दूसरा नंबर है 7355070677। इनसे संबंधित जानकारी देने के लिए या पता करने के लिए आप थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है खोए पाए हुए व्यक्तियों की सूचना में निशा बानू का, जो डॉटर ऑफ मोइनुद्दीन हैं। ये गली नंबर 28 बहरामपुर की रहने वाली हैं। वहाँ 25 फुटा रोड इनके घर के निकट का पता है। इनकी उम्र 19 वर्ष है और ये महिला हैं। शरीर की बनावट, इनका नाक कान और आँख औसत है और इनकी ऊंचाई 5 फीट है। चेहरे पर इनके हल्के दाने हैं। ये घर से बिना किसी जानकारी के कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप एक मोबाइल नंबर है जिससे संपर्क साध सकते हैं। नंबर है 7982424724। नंबर एक बार हिंदी में सुन लीजिए, 7982424728। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी

मिलने पर आप थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है नीलम का, जो पुत्री हैं राम प्रकाश की, और ये सेक्टर पथेला खंजरपुर सेक्टर 122 नोएडा गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 22 वर्ष उम्र है, महिला हैं, शरीर की बनावट इनकी औसत है, इनका रंग सांवला है, इनकी ऊंचाई 5 फीट है, और इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर 2 नंबर हैं जिस पे आप संपर्क साध सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9335354373 और एक और नंबर है 8851066516। नंबर हिंदी में कृपया नोट कीजिए 9335354373। दूसरा नंबर है 8851066516। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप थाना सेक्टर 113 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है गुमशुदगी में श्रीमती खुरबन का, जो वाइफ हैं कालीचरण की। ये गली नंबर 1 ग्राम बरौला सेक्टर 49 नोएडा की रहने वाली हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण है। इनकी उम्र 23 वर्ष है, ये महिला हैं, शरीर इनका इकहरा है, ऊंचाई इनकी 5 फिट है। ये थाना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप एक नंबर है जिस पर संपर्क साध सकते हैं। नंबर है 8595902537 और एक और मोबाइल नंबर है जिस पर आप संपर्क साध सकते हैं 9602264285। नंबर अंग्रेजी में सुनिए 9602264285। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है श्रीमती ललिता देवी का, जो वाइफ ऑफ सरजीत हैं, और ये रहने वाली हैं इकारी बहजोई जिला संभल की, और ग्राम चिटहेरा पुलिस थाना दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर इनका हालिया पता है। ये 17 जून 2026 से लापता हैं और इनके बारे में संक्षिप्त विवरण है। इनकी उम्र 30 वर्ष है, ये महिला हैं, इनका आँख नाक कान जो है वो औसत है, इकहरा बदन है, सांवला इनका रंग है, इनकी ऊंचाई 5 फिट है। ये अपने साथ निहारिका उम्र 9 वर्ष, अनमोल उम्र 6 वर्ष, रोली उम्र 2 वर्ष और श्लोक 10 माह के बच्चों को साथ लेकर कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप प्रभारी थाना निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी है श्रीमती अंकिता की, अंकिता घोष इनका पूरा नाम है। ये हैं पत्नी अमित मंडला की और ये ग्राम सालारपुर दिना से की रहने वाली हैं, जो दिनांक 23 जून 2026 से लापता हैं। इनका विवरण है 25 वर्ष इनकी उम्र है, ये महिला हैं, शरीर इकहरा है और इनकी ऊंचाई 5 फिट है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक नंबर है 9582857770। नंबर एक बार फिर से सुनिए 9582857770। इस पे संपर्क कर सकते हैं। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क साध सकते हैं। गुमशुदगी में ये अंतिम सूचना है रेणुका ग्वाला की, जो डॉटर हैं कृष्ण ग्वाला की। ये ग्राम ककराला सेक्टर 80 की रहने वाली हैं। 19 वर्ष इनकी उम्र है, ये महिला हैं, इनके आँख नाक और कान की बनावट सामान्य है,

इनकी ऊंचाई 5 फिट है। ये घर से दूध लेने की बात कहकर निकली थी और तब से ये घर वापस नहीं आई हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचना का क्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोता साथियों के कार्यक्रम युव वाणी का।

0: चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं। आज के इस खूबसूरत सफ़र में आपका दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूँ पारुल।
1: और मैं हूँ अमेया। आप सभी का युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बाहर कितना सुहाना मौसम हो रहा है ना पारुल, थैंक्स टू आर मॉनसून्स।
0: हाँ भाई, आज तो मौसम बढ़िया होना ही था। देवों के देव महादेव के श्रेष्ठ सावन का दूसरा दिन जो है।
1: सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ लोग शिव भक्ति के रंग में डूबे नजर आते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए ये सावन सबसे पवित्र समय माना जाता है।
0: संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष पिया था, जिसकी जलन शांत करने के लिए जलाभिषेक करते हैं लोग।
1: और हाँ पारुल, इस अवसर पर सावन के झूले डलते हैं, मेहंदी लगती है और एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं शिव जी को समर्पित ये गीत।

0: अमेया, आज जब मैं रास्ते में थी तो मैंने नोटिस किया कि हमारी स्ट्रीट वॉल्स पर कितनी सुंदर सुंदर स्ट्रीट वॉल पेंटिंग्स बनी हैं, जो अचानक ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। कभी वो अपनी सुंदरता के कारण, तो कभी सोसाइटल रिफ्लेक्शन को शोकेस करते हुए, तो कभी कभी एक पावरफुल कॉर्ड को हिट करते हुए एक बड़ा सा संदेश दे जाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा पारुल। आर्ट यानी वो जरिया जिसके थ्रू इंसान सदियों से अपनी कहानियाँ, अपनी सोच और अपने एहसास दुनिया तक पहुँचाता आया है। जब ना किताबें थी और ना ही न्यूज़पेपर्स, तब भी लोग केव पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग के जरिए अपनी बात कहते थे।
0: अरे अमिया, ये बात तो हो गई आजकल के समय की, लेकिन कभी तुमने सोचा है, जब ना किताबें थीं ना पेन पेंसिल थे, तो केवल एक पत्थर के टुकड़े से इंसान अपने अंतर्मन के एक्सप्रेशंस को दीवारों पर उकेरा करता था
1: और उन्हीं टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को खींचकर अपने भावों को व्यक्त करता था। और आज हम उन्हीं लकीरों को बड़े बड़े मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या सोचकर बनाया होगा। अब पारुल, इसी से सोचो ना भारत की समृद्ध कला विरासत के बारे में।
0: और इसी से अमेया मुझे याद आता है बिहार की खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स, महाराष्ट्र की जीवंत वर्ली आर्ट और भरतनाट्यम और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स। हर कला अपने साथ हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशंस की एक कहानी लेकर चलती है।
1: पारुल, वो डायलॉग याद है, डांस एक आर्ट है, आर्ट।
0: तो मैंने कब बोला कि वो नौ है?
1: अच्छा जी, डायलॉग बाजी। एनी हू, दीज आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑलवेज अराउज क्यूरियोसिटी इन मी। अच्छा पारुल, सोचो किताबें ना होती तो कैसा होता? किताबें हमें ऐसी जगहों की सैर करा देती हैं जो शायद हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हैं।
0: एब्सोल्युटली अमेया, किताबें हमें कभी अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने देती। हम उन सारे कैरेक्टर्स के साथ घुल मिले रहते हैं और ऐसा

0: लगता है कि हमारा और उनका एक संवाद हो रहा है और बस इसी तरह बिना लेखक को मिले लेखक से मिल भी लेते हैं। जैसे जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बहुत खूबसूरती से कहा है, अ रीडर लिव्स अ थाउजेंड लाइव्स बिफोर ही डाइज, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन।
1: That speaks volume, Parul. I really can't stop thinking about the vastness of artistic creations in the world.
0: इससे मुझे हमारी हिंदी के साहित्य की भी एक बात याद आई, जिसने इंसानियत और जीवन को बहुत ही सुंदरता से समझाया है। वाणी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए।
1: कितनी खूबसूरत बात है, सिर्फ दो पंक्तियों में पूरी जीवन शैली सिखा दी।
0: बिल्कुल अमेया। तो दोस्तों, घड़ी की टिक टिक इशारा कर रही है कि अब वक्त है एक गाने का।

0: ये गाना तो मुझे बड़ा पसंद है। खैर, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, आज की बात से।
1: मैं सेगमेंट की शुरुआत तुमसे एक सवाल पूछकर करना चाहूंगी। पारुल, क्या तुमने कभी डायरी मेंटेन की है?
0: जर्नलिंग का फैसिनेशन तो बहुत रहा है, इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू
1: बट कुडंट, है ना?

0: पर तुम्हें पता है, एक दिन मैं अपना रूम साफ कर रही थी तो मुझे एक पुरानी डायरी मिली स्कूल के समय की। उसे पढ़कर बाय गॉड इतना कुछ याद आया। लेकिन हाँ, एक बात समझ आई कि इवन एन इम्परफेक्ट थिंग कैन ऑल्सो बी क्वाइट आर्टिस्टिक।
1: अमेया, जीवन का हर एक हिस्सा आर्ट से गुथा हुआ है, फिर चाहे वो तीज त्योहार पर बनने वाले लड्डू, बर्फी, गुजिया, इवन

0: इनमें भी तो आर्ट है। या सर्दियों के स्वेटर, मफलर, ग्लव्स दादी नानी के हाथ के बुने हुए हों या मशीन के द्वारा, ये सब भी तो आर्ट ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा पारुल। हाउ वी क्रिएट, द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड दैट, बट व्हाई वी क्रिएट इज स्टिल द सेम, क्योंकि इन सब में प्यार और गर्मजोशी समाहित होती है।
0: अमेया, आर्ट और लिटरेचर की असली खूबसूरती सिर्फ बुक्स या पेंटिंग्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी यादों में, कहानियों में और हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है।
1: पारुल, तुम्हें बचपन की वो रातें याद हैं जब दादी नानी की कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती थी?
0: अरे बिल्कुल, और मज़े की बात तो ये थी कि हमें कहानी याद हो जाती थी, फिर भी रोज़ वही सुननी होती थी। एक था राजा, एक थी रानी, और अगर बीच में दादी कोई हिस्सा छोड़ दें तो हम तुरंत बोल पड़ते थे, अरे नहीं उसके बाद तो ये हुआ था।
1: और कभी कभी तो हम खुद भी कहानी में अपनी तरफ से नया ट्विस्ट जोड़ देते थे, लेकिन तब लगता था कि ये बस सोने से पहले की एक आदत है।
0: हाँ, लेकिन आज सोचो तो एक एहसास होता है कि वो सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, पंचतंत्र की कहानियों से दोस्ती और समझदारी, हाजिर जवाबी तो कभी मुश्किलों का हल ढूंढना, और दादी नानी की कहानियों से ये कि हर मुश्किल के बाद अच्छा समय तो आ ही जाता है।
1: और सबसे मज़ेदार बात, उस समय हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई हमें लाइफ लेसन सिखा रहा है, बल्कि मज़े मज़े में हम काफ़ी कुछ सीख भी जाते थे।
0: सही कहा, शायद इसी वजह से बचपन की वो कहानियाँ आज भी याद हैं, लेकिन मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज भूल चुके हैं।
1: बिल्कुल, और शायद यही लिटरेचर का असली जादू है, वो हमें सीख देता है लेकिन बिना ये एहसास कराए कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है। कभी किसी किरदार की जीत में अपनी खुशी दिखती है तो कभी उसकी हार में अपनी गलती। धीरे धीरे वो कहानियाँ हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं।
0: और शायद इसीलिए अमेया, एक अच्छी कहानी सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे फैसलों में, हमारी बातों में और हमारी यादों में जिंदा रहती है। शायद हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर होती है तो आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है।
1: हर रंग एक एहसास है, हर सुर एक कहानी, कला से रोशन होती दुनिया, साहित्य से मिलती जिंदगानी। इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: इसी के साथ वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है मन से माइक्रोफोन तक। तो अमेया, क्या कहती हो जाए कुछ इंस्पिरेशन के डोज?
1: बिल्कुल पारुल।
0: वैसे आज की कहानी एक ऐसे आर्टिस्ट की है जिसे शुरुआत में दुनिया सरफिरा समझती थी। इनफैक्ट, इफ यू लुक एट इट ट्रेडिशनली, ही वाज प्रीटी मच अ थीफ।
1: अ थीफ? क्या बात कर रही हो पारुल, कहीं तुम भूल तो नहीं रही हो कि हम यहाँ सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं।
0: जरा ठहरिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए। बात है 1990s के न्यूयॉर्क शहर की। रात के अंधेरे में एक लड़का घर से निकलता, पुलिस के छुपते छुपाते बस स्टॉप और फोन बूथ पर जाता और उनके कांच के बॉक्स खोल के अंदर लगे बड़े बड़े विज्ञापन और पोस्टर्स निकाल कर ले जाता।
1: ओह, तो मतलब वो सच में पोस्टर्स चुराता था।
0: नहीं अमेया, यही तो ट्विस्ट है। वो उन पोस्टर्स को घर ले जाकर रात भर उन पोस्टर्स पर अपनी सिग्नेचर कार्टून कैरेक्टर्स बनाता था, जिनकी आंखों पर एक्स का निशान होता था, और सुबह होने से पहले वो उन पोस्टर्स को वापस उसी जगह चुपचाप लगा देता था।
1: वाह भाई, चोरी में भी क्रिएटिविटी। वेट अ सेकंड, कहीं तुम ब्रायन डोनेली की बात तो नहीं कर रही हो, जिन्हें आज दुनिया कॉज के नाम से जानती है?
0: एग्जैक्टली अमेया, ब्रायन का मानना था कि बड़े बड़े आर्ट म्यूजियम आम युवाओं की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। उन्होंने सोचा अगर युवा आर्ट देखने नहीं जा सकते तो आर्ट खुद चलकर युवाओं के पास आ जाए, वो भी सड़कों पर।
1: Isn't that so cool? उन्होंने ट्रेडिशनल रास्तों का इंतजार नहीं किया, अपना रास्ता खुद बनाया और इन्हीं सड़कों से निकलकर वो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट बने।
0: अमेया, तुम्हें पता है ब्रायन जापान गए और उन्होंने अपनी कला को करोड़ों की पेंटिंग्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौनों यानी विनाइल टॉयज में बदल दिया।
1: और यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक था पारुल। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे महंगी पेंटिंग्स नहीं खरीद सकते थे, वो रिलेटिवली अफोर्डेबल कॉस्ट खिलौने खरीद कर अपने कमरों में सजाने लगे। युवाओं के बीच उनका एक जबरदस्त क्रेज था।
0: हाउ वंडरफुल, उन्होंने आर्ट को अफोर्डेबल और ट्रेंडी बना दिया, तभी तो आज हम उनके डिजाइन हर जगह देख सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा पारुल। आजकल फैशन वर्ल्ड में भी तो उन्हीं का डंका बज रहा है। नाइकी हो या डियोर, ये सारी कंपनियां उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं।
0: सचमुच क्या दिलचस्प कहानी है ब्रायन डॉनली की। लगता है कि आज मेरा धूल खाता कहीं कोने में पड़ा हुआ कैनवस आज फिर से जी उठेगा। फ्रेंड्स, दिस इज योर साइन टू नेवर गिव अप ऑन योर हॉबीज।
1: एकदम सही कहा पारुल। दिस इज एग्जैक्टली वॉट ब्रायन डोनेली स्टैंड्स फॉर। मेक आर्ट एंड कीप एट इट। अब सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: अमेया, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को आर्ट और लिटरेचर की दुनिया से कुछ दिलचस्प अपडेट्स देने का।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मेथड गैलरी की। यहाँ एक बेहद अनोखा आर्ट शो शुरू हुआ है जिसका नाम है हॉलिडे होमवर्क। है ना इंटरेस्टिंग?
0: अरे वाह, नाम सुनते ही बचपन की याद आ गई। इसमें वैसे है क्या?
1: इसमें कलाकारों ने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने और पुरानी चीज़ों से खूबसूरत आर्ट बनाया है। ये शो हमें याद दिलाता है कि बचपन में हम सब कितने क्रिएटिव हुआ करते थे।
0: That's really sweet, Ameya. I can't wait to go and check it out. दोस्तों, इसके साथ ही किताबों के शौकीनों के लिए भी एक ज़रूरी जानकारी है। दिल्ली में अगले महीने एन नूर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन होने जा रहा है।
1: जी हाँ दोस्तों, ये फेस्टिवल सितंबर 26 और 27 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ कई उभरते हुए लेखक और कवि अपनी कहानियाँ और कविताएँ पेश करेंगे। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
0: बिल्कुल अमेया, तो इस वीकेंड अपने स्केड्यूल में ऐसे आर्ट शोज और इवेंट्स को ज़रूर शामिल करें।

0: वाह, क्या सुंदर गीत था। दे से आर्ट वॉशेज अवे फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरी डे लाइफ, या यूं कहें कि जब जिंदगी की भागदौड़ थका देती है तो संगीत ही रूह को सुकून देता है।
1: बिल्कुल सही कहा मियां। और जब बात सुरों और सुकून की हो तो

0: आज से बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज 4 अगस्त है, यानी हम सबके चहेते सुरों के बेताज बादशाह किशोर कुमार का जन्मदिन।
1: जी हाँ, 1929 में आज ही के दिन जन्मे इस लेजेंडरी सिंगर ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भारतीय सिनेमा को योडलिंग सिखाई और संगीत की परिभाषा ही बदल दी।
0: अमेया, लोग उन्हें सिर्फ एक गायक समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर थे।
1: बिल्कुल, उनकी एक्टिंग और उनकी कॉमिक टाइमिंग तो कमाल ही थी। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन जैसी फिल्मों को देखकर आज भी लोग लोटपोट हो जाते हैं। पारुल, तुम्हें वो मशहूर किस्सा याद है जो मूवी हाफ टिकट के सेट पर हुआ था?
0: जब उन्होंने आके सीधी लगी दिल पे गाने का फीमेल पार्ट भी खुद ही लड़की की आवाज में गा दिया था।
1: यस, एग्जैक्टली, दैट्स द वन।
0: तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि उस दिन किसी कारणवश लता जी सेट पर पहुंच नहीं पाई थी। फिर क्या था, किशोर दा ने संगीतकार सलील चौधरी से कहा कि लता जी का पार्ट भी वो खुद ही गा दें, और सबको अपनी बदली हुई आवाज से हैरान करके रख दिया।
1: वॉट एन आर्टिस्ट! किशोर दा ने सचमुच बॉलीवुड म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी।
0: 1956 भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत हुई थी।
1: वैसे पारुल, आज खेल के मैदान पर भारत की कला का जादू बिखेरने वाले हमारे हॉकी महाजादूगर उधम सिंह का भी जन्मदिन है।
0: 1928 में जन्मे इस महान खिलाड़ी ने भारत के लिए एक नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। उनका ये जोश आज और भी ज्यादा याद आ रहा है।
1: ऐसा इसलिए पारुल क्योंकि अभी अभी समाप्त हुए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे एथलीट्स ने कुल 39 मेडल्स जीतकर इतिहास रचा है, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं।
0: स्पॉट ऑन, खासकर बॉक्सिंग में जो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, उसे देखकर उधम सिंह की वही विनर वाली लेगेसी याद आ गई। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इसका सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvani@feedback.gmail.com, yuvvanifeedback@gmail.com पर।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजर

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना

0: संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया।
2: पारुल, आज की बातें सुनकर मुझे कुछ यूं लग रहा है कि जिंदगी जीने में और जिंदगी को महसूस करने में थोड़ा सा फर्क होता है। वैसे दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, जिस yuvanifeedback@gmail.com yuvanifeedback@gmail.com
3: 100% अमेया, ये जो महसूस करने वाला जादू है ना, यही तो हमारी लाइफ में रंग भरता है। कभी किसी पुराने गाने की धुन में, तो कभी किसी किताब के पन्ने के बीच दबी हुई उस सूखी सी पत्ती में।
2: जी हाँ, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति। मैं अमेया
3: और मैं पारुल,
2: कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नए जोश, नए जज्बे और नए प्रोग्राम के साथ। We hope that today's talk helped you cultivate a lasting appreciation and a dedicated place for art in your life. Don't forget to send us your feedback at yuvani@gmail.com. Namaskar.

0: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 4:59:50 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। पीओजेके में जो हो रहा है वो जनता का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया मास्टर्स

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी हमारे युवा साथी किसानों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं अश्विनी कुमार रायपुरी और मेरे साथ मेरी साथी हैं
1: प्रियंका शर्मा। और देखिए अश्विनी भाई, सावन लग चुका है और सावन से जुड़ी इतनी सारी हमारी परंपराएं हैं और उन्हीं परंपराओं से जुड़े हमारे लोकगीत हैं और लोकगीतों का हमारा एक खास कार्यक्रम है लोक रंजनी। और अगर सावन की बात करें और लोक परंपराओं की बात करें तो जहां भाई अपनी बहन के घर सगी लेकर जाता है, वहीं झूले का भी सावन में अलग ही महत्व है। झूला डालती हैं, सखियाँ मिलती हैं और आपस में हर्ष और उल्लास के साथ झूला झूलती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ना, तो भाई सावन का जो त्यौहार, जो जो हमारा लोक रंजनी जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं लोक धुनों पर आधारित है। और जब हम लोक धुनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है कहीं ना कहीं गाँव की तरफ मुड़ जाता है। और जब कोई हमारे दिमाग में थकावट है या कुछ और है तो हम सोचते हैं चलिए आज गाँव की सैर हो जाए। ऐसा ही कार्यक्रम लोक रंजनी है जिसमें मैं और मेरी बहन जो है बात कर रहे हैं आपसे, और कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। बातें हम और भी आपसे करते रहेंगे, लेकिन सुन लेते हैं जो जिक्र जो हमारी प्रियंका बहन ने किया है, जो उसका आनंद लेते हैं और सविता शर्मा की आवाज़ में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज़ में ये सावन गीत, और एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं।
1: देखिए ना, लोकगीत तो हम प्रियंका सुनाते रहेंगे। कहते हैं ना कि बड़े बड़े जितनी सेवा धरती की उतनी मेवा घर में। हमारा किसान पसीने की हर एक बूंद से खुशहाली बोता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, उम्मीदें फसल सभी सूखने नहीं देते। लो जी, अब उम्मीदें और मुस्कान नाम सुनिए। और प्यारा सा हम गीतों की बात कर रहे हैं, और मन करता है कि अरे चलो चौपाल बैठो बैठो और हुक्का गुड़गुड़ा गुड़गुड़ाते रहो। नीम की छाँव में बैठकर जब गांव की बातें होती हैं ना प्रियंका, तो हर किस्सा अपने आप से भर जाता है। और जब रेडियो पर लोकगीत बजते हैं तो मन जैसे आप मुस्कुरा रही थी और नाच रही थी। अपना ये भाई जो बहनों का जो गाना है, उसमें तो देखिए सविता खुद भी गाना चल रहा है, हमारा लोकगीत चल रहे हैं, और सविता भी मुस्कुरा रही है और उसके चेहरे पर बिल्कुल बहुत अच्छी मुस्कान है। यही लोकगीतों का एक अपना महत्व है कि एक दूसरे से जोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीन जुड़ जाती है, और यही खासकर क्योंकि लोकगीतों में जो प्रेम है एक दूसरे से, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे तीज त्यौहार हो, चाहे रक्षाबंधन हो, तो यही यही लोकगीतों की खासियत है। बाकी हम बातें और भी करेंगे अपने प्रोग्राम में।
0: अभी सुनते हैं योगेश कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे योगेश कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत। और देखिए, सावन का तो महत्व है ही, और इसमें तीज का त्यौहार भी आता है, जिसको भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारी जो बहनें मनाती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और साज श्रृंगार करती हैं और पूजा पाठ करती हैं ताकि उनका सुहाग अमर रहे।
1: बिल्कुल, देखिए ना, सावन आने पर ही सारे के सारे त्यौहार, जो त्यौहार अपने शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरी बहन प्रियंका ने बोला कि तीज और त्यौहार की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सारी चोरी जो हमारी बहन हैं उनके कहीं ना कहीं डिमांड भी शुरू हो जाती हैं, और वो चाहती हैं कि भाई नए जब त्यौहार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूड़ियाँ हैं बाज़ार में, नए नए वस्त्र हैं तो ख़रीदें और उस त्यौहार का पूरा का पूरा आनंद लें और मज़े लें। तो कार्यक्रम में और भी आपसे बातें होती रहेंगी, और सुन लेते हैं हम
0: पुष्पा गुसाई और साथियों से ये लोकगीत।

0: मेरी कमर बीच लहराए। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उनके साथियों से ये बहुत ही सुंदर लोकगीत। और अगर लोकगीतों की बात करें तो लोकगीतों पर आधारित हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम भी होता है, SMS पर आधारित कार्यक्रम भी होता है, इसके साथ साथ पत्रोत्तर का कार्यक्रम भी होता है। किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के लोकगीत।
1: बिल्कुल, आप कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की घड़ियां में इशारा कर रही हैं, लेकिन जाने का मन नहीं करता क्योंकि लगातार हम आपसे बात बात करते रहते हैं और प्रोग्राम आपके आपके इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि और 15-20 मिनट होने चाहिए कम से कम आपसे बात करने के, लेकिन फिर भी लगातार घड़ी कह रही है कि हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों और किसानों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार प्रासर और संयोजक हैं शिवनर लाल। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी को हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, बस कुछ ही देर में।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरी युवा साथी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार
1: अमीषा। आज सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को एक खास रेडियो रिपोर्ट सुनवाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ऊपर, और उसमें बताएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में, क्योंकि कई सारी ऐसी स्पर्धाएं इस बार खेलों में नहीं थीं जिसमें हम बहुत अधिक पदक जीतते थे, जैसे कि शूटिंग, रेसलिंग, तीरंदाजी, ये इस बार नहीं थे, इसलिए पदकों की संख्या कम अवश्य है, लेकिन हमारे पैरा खिलाड़ियों ने और ख़ास तौर से हमारे एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, वहीं हमारे जूडो के खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है वो एक काबिल तारीफ चीज़ है। तो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं हमारी खास रेडियो रिपोर्ट।
3: The Commonwealth Games.

स्कॉटलैंड में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जांबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो, जहां भी हो, भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं

0: अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खासतौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: त्रिदीप, शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे, जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में, भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल। अगर आप टोटल मेडल से देखें, जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
3: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड हैं उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन 3 स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन 3 खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट जो ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, खैर पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
3: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जेवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है और अब तो इतने सारे जेवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं, सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे। क्योंकि देखिए अब जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है।

0: तो मैं खुश जरूर हूं, और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये 3 गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है। थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
1: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया। जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो, जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में, जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें, तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों की साइड में देखें, तो ये मैं बोल सकता हूं, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखें, तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटा, नरेंद्र, वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल ला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश, वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया, बॉक्सिंग के बाउट ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा, ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया। और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ 4th।
1: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि ये प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
0: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे। क्योंकि फीमेल, चाहे हम वेटलिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो, तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु हैं, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी, उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं। वेटलिफ्टिंग में भी अगर आप देखें, तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है, और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं। और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाओ, मैं जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू आवर मेल कंपेटिटर्स।
1: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है, क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे रहे, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है इट्स नॉट इन द मेन सिटीज, इट्स इन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एंड सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कोई भी एथलीट को अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए वो कभी निराश ना हो। तो अब जैसे ही अश्मिता ने स्वर्ण लाया उसके पीछे हमारे हर्ष सिंह आ गए, जो पहले मेल एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया। जैसे बताया था हमारी एक्सपेक्टेशन तुलिका और अवतार सिंह से भी थी जो पहले खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये नए बच्चों ने जो आके जो ये प्रदर्शन दिया है, आई एम 100% श्योर कि हमारा फ्यूचर जूडो में अच्छा होगा
1: जी। और महावीर पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार कमाल कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता
0: है? ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें कोई एक स्पोर्ट जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, 1 गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था। 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17-19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है। अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200 400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की ही कहानी मैं बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए। और उस लड़के ने, उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बीट 10.71 हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है।
1: बिल्कुल।
0: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस किया। और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो, अमेजिंग। जैसे यूसेन बोल्ट की, ही इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर। दिलीप ने भी बहुत स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5.5 सेकंड में खत्म किया। और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती। शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ। पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी 2 बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं है, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है। देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतने आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ। बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है। हमारे दोनों फौजी जो हैं, जुयाल और सुमन राणा, दोनों मेडलिस्ट हैं। और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेस में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए। क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपकी कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए। और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
1: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
0: पूरा। और सरकार का इसमें पूरा, मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है और एक नहीं 2 बार कराया है। और मैं सुनने में आ रहा हूं कि जल्दी 3रा एडिशन भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खिंचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा, वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो टॉप्स हो, वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं। तो हमारे पैरा एथलीट्स को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, ACTC में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना की नॉर्मल बॉडी का है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में।
1: जी, और त्रिदीप, कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके, इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
2: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे 2 मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट

0: गेम्स में हमारे मेडल्स थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमारे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई। बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वॉज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014। उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले एशियन गेम्स में वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल हैं, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहाँ 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से एशियन गेम्स में हमने कभी वेट लिफ्टिंग पे मेडल लाया ही नहीं है। हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं लेकिन एशियन में नहीं ले पाए। सो एवरी शू डजन फिट एवरी वन, वट आई वुड लव टू से। तो इवेंट्स अगर, हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो रही है, गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ भी बैठेंगे ताकि इनकी प्लान डिवाइस कर पाए कि कैसा एक्सपोजर चाहिए, या कोई इनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहिए, कोचेस चाहिए, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट इन सारे डिसिप्लिन्स में जहाँ हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इम्प्रूव कर पाए।
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है। खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है। अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
2: नहीं, मौका तो होगा ही, हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी हुए होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में, इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से या विश्वास है कि गुजरात में आ वक्त जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे। और मैंने देखा हर सांगी जी वहाँ ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, पीटी उषा जी वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है और उसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल, मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें।
0: जी, और जैसे महावीर जी ने कहा है, और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन्स में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे। अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकेंड आए, वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकेंड से टॉप में आए।
1: जी, तो एक सवाल यहाँ तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
0: उम्मीद तो बहुत है, सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है, जैसे स्कीम जहाँ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती हैं ACTC के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहाँ खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर्ड लगता है। और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में, आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे।
1: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता
2: नहीं,
1: है।
2: तब तक एलोकेट हो जाएंगे इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है। और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया है, हम पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखाए, हमने करके दिखाया है। तो बाय द टाइम 2030, होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए।
0: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे।
1: तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया। इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है। हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं। खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
4: ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमारे सहयोगी और एक बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि कैसे कैसे कॉमनवेल्थ की खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है और इतने सारे पदक जीते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी अब लगातार दे रहे हैं नीरज चोपड़ा। अभी उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में जिस तरह से सिल्वर पदक जीता है तो अब डायमंड लीग के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है।
5: जी बिल्कुल अजय जी, ये हाँ मेडल्स की बात हो रही है और नीरज चोपड़ा की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जो हैं वो अब अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं। उनका नाम 21 अगस्त में होने वाली जो लोशन डायमंड लीग की मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट के लिए अनाउंस कर दिया गया है। इस मुकाबले में नीरज का सामना ओलंपिक चैंपियंस अरशद नदीम, थॉमस रोलर और केशॉन वॉलकॉट के अलावा 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स और इस सीजन के वर्ल्ड लीडर जो रहे हैं श्रीलंका के रुमेश पथिराजे जो कि वो हैं लीडर, एक अच्छा जिनका प्रदर्शन रहा है इस बारी, और वर्ल्ड नंबर 2 कर्टिस थॉम्सन और यूरोपियन चैंपियंस जैकोब वेडलेट और जूलियन वेबर जैसे कई टॉप जैवलिन थ्रोअर्स से होगा। एथलेटिक्स फैंस की नज़रें ज़रूर एक बार फिर नीरज चोपड़ा पर रहेंगी।
4: बिल्कुल सही कहा आपने अमीषा, और जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने लगातार अपने खेल से सबको प्रभावित किया और आज उसका नतीजा ये है कि भारत जेवलिन थ्रो में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 85 मीटर से अधिक का जेवलिन यानी कि भाला फेंक रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात तो अब चेस में भी है।
5: जी बिल्कुल, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में खेले जा रहे सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। 6 राउंड के बाद जो प्रज्ञानंद हैं वे 9 अंकों के साथ अकेले पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनके करीबी प्रतिद्वंदी से सिर्फ 2 अंक आगे हैं। दूसरे दिन खेले गए 3 मुकाबलों में उन्होंने 1 मैच जीता और 2 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। 5वें राउंड में उन्होंने अमेरिका के वंडर लियांग को शानदार रणनीति के दम पर हराया। वहीं 6वें राउंड में अमेरिका के वेस्ली सी के खिलाफ मुकाबला 117 चालों तक चला और आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
4: और कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा जिस तरह से खेल रहे हैं तो वो दर्शाता है कि आने वाले समय में वो निश्चित तौर पर एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए फुटबॉल के मैदान पर भी इस समय जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली की टीमें आमने सामने हैं। और ये मुकाबला, हालांकि जमशेदपुर एफसी लगातार अटैक करती जा रही है और 1-0 की बढ़त भी उन्होंने बना ली है डूरेंट कप में, और आज शाम को जो अगला मुकाबला होना है डूरेंट कप का वो होना है मोहन बागान सुपर जायंट और साउथ यूनाइटेड एफसी के बीच में। और एक अन्य मुकाबला चल रहा है दिल्ली प्रीमियर लीग में, जहां पर आज जो मुकाबला वर्षा बाधित है वो न्यू दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच में है। पहले खेलते हुए न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 158 रन बनाए और अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 77 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर्स का ये मुकाबला है तो अभी उनको 79 रन चाहिए 41 गेंदों पर। तो ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन अमीषा अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें विदा लेनी होगी। तो मैं अजय तोमर, मेरे साथ मेरी सहयोगी अमीषा पटेल और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, हम सभी मिलकर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
6: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
7: पीठ की शायद जरूरत ना पड़े।
8: नमस्कार,
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए LPG और LNG की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदाद्य जन्म मरण पंजीकरण संशोधन विधेयकं पारितम्। ओडिशा राज्ये प्रमुख नदीनाम आप्लवन ह्रासेन आपत्स्थितिः शमम् उपैति। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य बाग जनपदे पाकिस्तानी सेनायाः निरपराध नागरिका नालक्ष्य गोलिका प्रहारेण अशांतिः वर्धते। होमूर्स जलमार्गे व्यापारिक पोते नूतन आक्रमणेन अमेरिका ईरान देशयोः युद्ध समाप्तये प्रचलन्त्यां शांति वार्तायां अनिश्चितता उत्पन्ना। अपि च आसान नगरे आयोजितायां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः स्वीय क्रीडां प्रारब्धवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण संबद्धः उपयुक्तः विधेयकः 26th-2000 पारितः। अद्य राज्यसभायापि अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। लोकसभाया एतद् विधेयकं पूर्वमेव पारितम्। गृहराज्यमंत्री नित्यानन्दरायः उच्चसदने एतद् विधेयकं उपस्थापितवान्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं राज्यसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् यदा मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनानन्तरं राज्यसभा पुनः समवेता तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ विपक्षसदस्यानां कोलाहलस्य मध्ये एव प्रश्नकालं प्रारब्धवान्। अनेकैः सदस्यैः पृष्टानां प्रश्नानां मन्त्रिभिः उत्तराणि प्रदत्तानि। विपक्षीणां विरोधोद्घोषेषु सभापतिना कार्याचरणं 2 यावत् स्थगितम्। उच्चसदनस्य उपवेशनावधौ विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड्गे अयोध्या राम मन्दिरात् दानचौरस्य विषयम् उपस्थापितवान्। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः प्रावोचत् यत् अयोध्यायां राम मन्दिरस्य विरोधं कुर्वन्तौ कांग्रेस समाजवादी पक्षौ अद्य दानचौर्यस्य मिथ्यारोपैः जनसामान्यं भ्रामयितुं प्रयतेते। रिजिजुः अकथयत् यत् एतत् सदनं सर्वेषामस्ति, कांग्रेस दलं च उद्दिश्य समयस्य दुरुपयोगं एते कुर्वन्ति।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: अपरत्र लोकसभाया अद्य विनियोग विषयकः विधेयकः 26th-2000 पारितं गतः। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। अत्रावसरे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्य कराधान अन्य विधि विधेयकं 26th-2000 सदने प्रास्तवीत्। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अधिकृत्य अन्येषु प्रकरणेषु च विपक्षीणां सतत अवरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणं बाधितम् अभवत्। संसदी एनडीए दलस्य मंगल मिलन रणनीतिक उपवेशनं सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह शीर्षनेतारः नवगठित एनसीपीआई दलस्य सांसदाः च उपस्थिताः आसन्। संसदी मंगल मिलन प्रसंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघस्य मंत्रणा सभा अपि संजाता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्ये महानद्याः जलस्तरस्य ह्रासेन सह जलप्लावनस्थितिः शमम् उपैति। यद्यपि जलमग्न क्षेत्रेषु अद्यापि सहस्रशः जनाः जलावरोधस्य कष्टम् अनुभवन्ति, तथापि सर्वकारस्य आपत् रक्षक बलैः भोजनचिकित्सा सेवानाम् आपूर्तिः सुष्ठु

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई, ग्राम संसार कार्यक्रम में जहां हम बरसात में मुर्गी पालन संबंधी प्रबंधन के बारे में जानकारी दिलवाएंगे, वहीं मनोरंजन भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद और बॉम्बे के शेर के रूप में प्रसिद्ध सर फिरोज शाह मेहता की जयंती के बारे में। आज उनकी जयंती है, 4 अगस्त 1845 को उनका मुंबई में जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका बहन कि उनको फादर ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। एक ऐसी दूरदर्शिता नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, पत्रकारिता, जनसेना और को कई नई दिशा दी। हम जहाँ बात कर रहे हैं सर फिरोज शाह मेहता जी की, जिनकी जयंती हर वर्ष 4 अगस्त को मनाई जाती है। आज़ादी की लड़ाई केवल तलवार और आंदोलनों से ही नहीं बल्कि विचारों से, कानूनों से, जन जागरण से भी लड़ी जा सकती है। फिरोज शाह मेहता एक ऐसे महान नेता हैं ना थे जिन्होंने अपने ज्ञान, ईमानदारी और नेतृत्व को देश को एक नई सोच दी।
0: बिल्कुल, उनका राजनीतिक जीवन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद करते रहेंगे हम और प्रेरणा लेते रहेंगे ऐसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे। और अब आज के प्रोग्राम में भी हम आपको देशभक्ति गीत भी सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, देशभक्ति गीत भी सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और ये बॉम्बे के शेर के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं अपने बहनों और भाइयों को कि उनकी निर्भीक व्यक्तित्व और प्रभावशाली भाषणों के कारण लोग उन्हें द लॉयन ऑफ बॉम्बे यानी अर्थात बॉम्बे का शेर कहने लगे थे। वे अंग्रेज सरकार के सामने भारतीय अधिकारियों की बात बड़ी मजबूती से रखते थे और उनका योगदान देश में बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर उनकी बात करें कि फिरोज शाह मेहता का सबसे बड़ा योगदान नगर प्रशासन को मजबूत बनाने का था। उन्होंने मुंबई नगर को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए और प्रयासों की सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था, सड़कें और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की पूर्ण कोशिश करी। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं और अपना कार्यक्रम यहीं से शुरू करते हैं और अब हम बातें और भी करेंगे,
0: लेकिन पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत और कलाकार होंगे तेजवीर भदूरी।

0: अभी आप सुन रहे थे तेजवीर भिदूरी की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी, और हम अपने कार्यक्रम में ग्रामीण विकास की बातें करते हैं। और हमारे जो भाई बहन हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं, जहाँ बरसात के मौसम में एक तरफ मौसम सुहाना हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बीमारियां भी पनपती हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य कुछ जानकारियां हमारे किसान भाइयों को हम दिलाना चाहते हैं। और जो भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए खास बातचीत हम लेकर आए हैं, जिसका विषय है बरसात में मुर्गीशाला प्रबंधन। और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम निवास शर्मा, पशु विशेषज्ञ। तो इनसे सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि जो किसान है या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, किसी न किसी तरह से उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। बहुत सारी कोशिशें इस क्षेत्र में की जा रही हैं और हमें लगता है कि अगर किसान किसानी के साथ साथ यानी खेती बाड़ी के साथ साथ सहायक धंधे भी करते हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है या मुर्गी पालन है, ये करते हैं तो यकीनन उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, तो इस बरसात के मौसम में मुर्गियों की उचित देखभाल कैसे करें ताकि उनसे अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सके, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर RN शर्मा जी। आप पूर्व पशु वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बरसात में जो पौधों के लिए, फसलों के लिए तो बहुत अच्छी है,
2: हाँ
1: लेकिन जब बात करते हैं मनुष्य की, पशु पक्षियों की, तो

0: कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं, इस तरह की
1: जी
0: समस्याएं देखी जाती हैं। तो मुर्गियों में खास तौर पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मुर्गियों का आवास है वो किस प्रकार का होना चाहिए।
1: देखिए, जो मुर्गी पालन हमारे देश में किया जाता है उसमें बहुत सारे संख्या में जो मुर्गियां हैं वो शेड के अंदर रखी जाती हैं, तो और ये बहुत ज़्यादा मौसम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा ठंड हो जाए या गर्मी हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए तो इनका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो जो इस तरह से जो आजकल बरसात लगभग हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है, तो वैसे तो बरसात बहुत ज़रूरी है, परंतु मुर्गी पालन में ये ध्यान रखना है कि जो आवास है उसका मुर्गी का वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। जैसे कई बार जो बारिश होती है या उसके साथ हवा चलती है तो हवा के साथ साथ जो पानी है वो शेड के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए जो उसका छज्जा है वो 3 फुट से कम निकला होना चाहिए बाहर, ताकि कोई भी इस तरह से अगर मान लो हवा के साथ बरसात होती है तो उसमें कोई तरह से पानी ना जाए। दूसरा जो आवास है उसमें कई बार हमारे जो मुर्गी पालक हैं ज़्यादातर गर्मियों में या सर्दी के दिनों में पर्दा लगा के रखते हैं, और हम बताते भी हैं कि भाई मुर्गी को उससे बचाना है। तो कई बार ये देखा गया है कि बरसात से अगर वो पर्दे भीग जाते हैं वो फिर उनको तुरंत ही साइड में कर देना चाहिए, ताकि जो है आवास के अंदर जो ताज़ा हवा है वो उसमें पहुंच जाए और किसी तरह की ज़्यादा उसमें नमी ना हो। तो ये ध्यान रखें। और आवास में जैसे हम बताते हैं कि उसके जो आवास हैं कभी बनाए तो उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो, उसमें जो बीच का हिस्सा है उसमें कम से कम 12 फिट या 13 फिट का जो है ऊंचाई होनी चाहिए बीच में से, साइड में उसमें जाली होती हैं, और जो छत होती है वो तकरीबन एस्बेस्टस की छत अगर बनाते हैं तो वो अलग अलग तरह के मौसम में बहुत लाभदायक रहती है और मुर्गियां हमारी आराम में रहती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बरसात में आपने बता दिया कि आवास हमारा किस तरह का होना चाहिए।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इसमें मेरे को लगा कि आपने जो झलक दी है वो दी है कि प्रबंधन, के
1: हाँ
0: प्रबंधन आपका सही होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुर्गियों से अधिक उत्पादन के लिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना है, यानी और क्या-क्या प्रबंधन की चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है।
1: जिस तरह से अब गर्मी के बाद में जैसे बरसात शुरू हुई है तो इस मौसम में क्या है कि जो तापक्रम है वो भी ज़्यादा होता है और हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो इस तरह की जो वातावरण है वो मुर्गियों को बहुत परेशान करता है। कई बार अगर बारिश हो रही तब ठीक है, लेकिन जब ऐसे धूप निकलती है, तेज़ धूप निकलती है, तो मुर्गियाँ उसमें हाँफने लगती हैं। तो एक तो ये है कि उनको हवादार जगह होनी चाहिए, और इस मौसम में जो मुर्गी घर है उसमें पंखा बहुत अच्छा काम करता है, तो इस मौसम में कूलर इतना काम नहीं करता कि कूलर से तो और भी ज़्यादा है उसमें नमी होने की संभावना रहती है। तो उसमें अब मुर्गियों को एक तो ये है कि मुर्गी घर में पंखा चला के रखें ताकि जो हवा है वो पूरे में एक तरह से चारों तरफ घूमें और मुर्गियों को उसमें आराम रहे। दूसरा ये है कि इस मौसम के अंदर नमी के कारण जो बुरादा है वो गीला पड़ जाता है, उसमें जो है नमी आ जाती है, तो ये हमारे उनको देखते रहना चाहिए कि कहीं जहाँ पानी के बर्तन रखे हैं, कई बार जब मुर्गी पानी पीती है तो उसमें से चोंच मारती है, बखेड़ देती है, तो ऐसे मौसम में ये बुरादा है काफ़ी गीला होने का संभावना रहती है। तो एक तो चूने का इस्तेमाल कर दें, अगर हल्की सी नमी है तो उसमें चूना बिखेर दें और उसको बिछावन के अंदर मिला दें, और अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया है बर्तनों के आसपास गीला ज़्यादा हो गया है तो उस बिछावन को बदल देना चाहिए, दूसरा उसमें बिछावन उसमें डाल देना चाहिए। अब बात यह है कि सफाई की, देखिए मुर्गी घर में अगर साफ़ सुथरा होगा तो बीमारी भी कम लगती हैं, तो ऐसे मौसम में नियमित रूप से जो मुर्गी घर का जो फर्श है जो बिछावन है उस पर पूरी तरह से उसको साफ़ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, और उसमें जो उसके पंख हैं या बीट हैं या और कुछ गंदगी है उसकी समय समय पर सफाई करें, और इस जो वेस्ट मटेरियल है इसको मुर्गी घर से दूर गड्ढे में डालें, कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी घर के अगर आसपास डालेंगे तो ये उड़ के फिर दोबारा मुर्गी घर में आ सकता है और उसमें कई तरह के कीटाणु और उनके परजीवी कई तरह के मतलब उसमें लग सकते हैं। दूसरा ये है कि जो पानी है पानी भी वो मुर्गियों को ताज़ा देना चाहिए, और देखिए कई बार पानी गंदा हो जाता है, मुर्गी उसमें चोंच मारती है, कुछ दाना डाल देती, तो समय समय पर जो पानी है उसको जो है बदलते रहना

0: चाहिए ताकि मुर्गी को साफ़ सुथरा पानी मिले, कोई इस तरह की उसमें बीमारी नहीं आए। अब एक बात और मैं दाने की बताऊंगा। बरसात के मौसम में दाना उतनी ही मात्रा में डालें जितना मुर्गी खा ले। बर्तनों में ज़्यादा दाना छोड़ना नहीं चाहिए, उसको समय समय पर डालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डालते रहें, क्योंकि इसमें फफूंद लगने का भी डर रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में मैंने जैसे बताया कि उसमें नमी रहती है, तो जो उसका दाना है वो सूखी अवस्था में उसमें रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मुर्गी पालक है इस मौसम में उसको पूरा सावधानी पूर्वक अपनी सारी मुर्गियों पर निगाह रखनी चाहिए। कोई अगर मान लो मुर्गी सुस्त है या कोई मुर्गी मर गई है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दें और उसको मुर्गी फार्म से दूर ले जाके उसको दबा दें।
1: डॉक्टर साहब, दाने की बात आपने करी है। दाना जो है वो जो अच्छी खुराक जिसे हम कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, तो
0: बिल्कुल।
1: वो क्या होना चाहिए, कितना मात्रा में क्या क्या चीज़ मिला के देनी चाहिए?
0: देखिए, जो कहते हैं कि जी 60 से 70% जो खर्चा है मुर्गी पालन में
1: जी
0: वो इसके आहार पर ही आता है, दाने पर ही आता है। तो दाने में सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो मुर्गी हम ब्रॉयलर हो मांस उत्पादन के लिए हो या जो है अंडा उत्पादन के लिए हो, तो दोनों ही प्रकार की मुर्गियों के लिए जो दाना है वो संतुलित होना चाहिए। और वो संतुलित दाना मतलब ये होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसमें खनिज तत्व, नमक, ये सारे तत्व उसमें होने चाहिए। क्योंकि खनिज तत्व में देखिए बहुत कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, क्लोराइड बहुत सारे हैं जो मुर्गी में अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनका संतुलित आहार होना चाहिए। और संतुलित आहार बनाने के लिए देखो उसमें मक्का का विशेष रूप से उसमें इस्तेमाल होता है।
1: जी
0: तो मक्का है, गेहूं है और उसके अंदर खल है, और देखिए उसमें मछली का चूरा है, ब्लड मील है, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं। खनिज जो मिश्रण है वो 2% उसमें होना चाहिए और नमक भी उसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुर्गी का दाना बनाया जाता है और उनकी आवश्यकता अनुसार दाना दिया जाता है। जैसे जैसे ब्रॉयलर है उसको हम 42 दिन के लिए रखते हैं, तो उसमें दो तरह का राशन होता है, एक स्टार्टर होता है, एक फिनिशर होता है। परंतु जो मुर्गियां हमारे अंडा उत्पादन के लिए होती है उसमें दो तीन तरह का दाना उसमें होता है, मतलब स्टार्टर है और फिर ग्रोअर है, फिनिशर है। तो मतलब उनकी आवश्यकता अनुसार उसमें प्रोटीन की मात्रा उसमें घटाई बढ़ाई जाती है। तो मतलब ये है कि दाना संतुलित हो, साफ़ सुथरा पानी हो, तो अगर ये संतुलित दाना उनको मिलता रहेगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनका अंडा उत्पादन भी लेयर्स में अच्छा बना रहेगा।
1: अब डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आती होंगी मुर्गियों में, तो कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं और किस तरह से बचाएं?
0: देखिए जिस तरह से हमने प्रबंधन की बात की है कि अपने मुर्गी घर को हवादार रखें, उसमें जैसे कई बार अमोनिया गैस बन जाती है, पर्दों को हटावें और रात के समय भी मौसम के हिसाब से मतलब ये रखें। अगर बारिश आने का उसमें अगर खतरा है तो देखिए बोरी के जो पर्दे हैं उनकी जगह पे प्लास्टिक के जो पर्दे हैं उनको रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह से शेड के अंदर पानी न जाए। तो अगर मॉइस्चर नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा तो बीमारी भी कम लगेंगी। और इसमें मुर्गियों में हमने देखा कि इसमें बहुत तरह की विषाणु और जीवाणु जनित और बहुत सारे परजीवी तरह की जो है इसमें रोग लगते हैं। तो मुर्गियों में देखिए अगर रोग हो जाता है तो उसका उपचार तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु इसका बचाव बहुत अच्छा है। और दोनों तरह की मुर्गी में कई प्रकार के टीके लगते हैं, उसमें जैसे रानीखेत का टीका है और जो ब्रॉयलर हैं उसमें तो केवल दो तीन तरह के टीके लगते हैं, रानीखेत का है और जैसे उसके दो टीके लगते हैं। और जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गी हैं उसमें जैसे चेचक का है, और उसमें देखिए बर्ड फ्लू का हो जाता है कई बार, लीची का रोग है, मेरेक्स का है, मतलब ये कई तरह के जो वायरस से होने वाले ये रोग हैं ये उनमें होते हैं। तो इनका समय समय पर जो है ना टीकाकरण अगर करवा देते हैं आप, जैसे मैं अगर चेचक की बात करें तो 8 हफ्ते पर उसका लगा देते हैं। एवियन एंसेफलाइटिस की बीमारी होती है, उसका 90 दिन के ऊपर टीका लगता है। तो मतलब पशु चिकित्सक की सलाह से ये अपना समय पर टीका लगवा दें। दाने के अंदर कोक्सीडिया एक जो दस्त लगा देता है उसकी दवाई भी डाल के रखें, तो दाने में अगर कोक्सीडिया की दवाई देंगे तो उससे भी बच सकते हैं। कई बार इसमें परजीवी हो जाते हैं, बाह्य परजीवी, तो उनके लिए भी स्प्रे होता है तो उनकी स्प्रे करें। तो इस तरह से अगर मान लो उनको बचाव के टीके देंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मुर्गियों को इस बरसात के रोग में बचा सकते हैं जो है।
1: डॉक्टर आर्यन शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे मुर्गी पालक भाई हैं वो इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी जानकारी दे रहे थे हमारे डॉक्टर रामनिवास वर्मा जी, जो पशु वैज्ञानिक हैं, और उनसे बातचीत कर रहे थे नरेश पराशर जी, जो हमारे सीनियर अनाउंसर हैं। बहुत सटीक सवालों का उन्होंने बौछार की, और हमारे डॉक्टर रामनिवास जी ने उनका सटीक उत्तर दिया। जो हमारे किसान भाई हैं, जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातों का, जो हमारे डॉक्टर साहब ने अपने इस कार्यक्रम में बताया है, उनका अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपना जो भी उससे उत्पादन, अंडा उत्पादन है या मांस उत्पादन है, तो उनसे सही ढंग से ले पाएंगे। छोटी सी बातें हैं, जैसे मैं कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं और प्रियंका भी सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों का, अगर जिसमें जिसमें जो मुर्गी की बीट है, उनका पानी है, रख रखाव है, और सबसे बड़ी बात है कि भाई बारिशों के दिन है, उनका रख रखाव कैसे करना है, पानी उन तक ना पहुँचे जिससे जो परजीवी हैं वो उन तक ना पहुँचें, जिससे मुर्गी बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें टीकाकरण उन्होंने बताया कि रानीखेत का टीका है, जिसमें चेचक का टीका है, लीची का टीका है, वो लगवाएं तो मुर्गियों को उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। और उन्होंने दाना, दाने के लिए भी कहा कि ज़्यादा दाना ना डालें, ख़त्म होने पर ही दाने का दाना डालें, जितनी मुर्गियाँ खा सके उतना ही करें, और संतुलित आहार की उन्होंने बात करी अपने इस उसमें बातचीत में। तो अगर इन हम छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम मुर्गी पालन में ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे किसान बहन भाइयों को अधिक से अधिक लाभ होगा। और बातें और भी होती रहेंगी, तो और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था रामायण का। इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान के

0: सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सिद्धार्थ
4: और पूजा का प्यार भरा नमस्कार। सिद्धार्थ, किसान वाणी में हम अपने श्रोताओं को खेती से संबंधित जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
3: जी हाँ पूजा, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और जिनसे हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह करें। और पूजा, हम अपने किसान भाई बहनों से ये भी साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव। पूजा, भारत सरकार किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है और किसानवाड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो किसान भाई बहनों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पूजा, कई बार ऐसा होता था कि फसल जब खराब हो जाती है किसान की तो उसको बहुत घाटा होता था, तो ऐसे में ये योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है।
4: जी श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है तो पात्र किसान भाई बहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का दावा दिया जाता है।
3: और पूजा, यहाँ पर ये भी अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि योजना के तहत जो किसानों का प्रीमियम है उसे भी बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2%,
4: अच्छा?
3: रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम ही देना होता है और जो बाकी प्रीमियम बचता है उसका वहन केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
4: ये तो बड़ी कमाल की बात है
3: जी।
4: और साथ ही साथ जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल का बीमा करा लेना चाहिए। इसका आवेदन बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन के समय आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण, भूमि और बोई हुई फसल की जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी होता है।
3: और पूजा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि यदि बीमित फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को निर्धारित समय के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को देनी चाहिए ताकि दावा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
4: बिल्कुल, इसलिए समय पर अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें। और इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो फिर अपने आसपास के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं।
3: और पूजा, साथ ही किसान भाई भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। खरीफ का मौसम हमारे देश की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों को सही समय पर सही मात्रा में और संतुलित रूप से पोषक तत्व मिले। केवल उर्वरकों का अधिक प्रयोग ही समाधान नहीं है, बल्कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है और साथ ही साथ खेती

0: और अधिक लाभकारी भी हो जाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलसाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम किसान वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, चर्चा का जो विषय है उसके अनुसार अपनी बातचीत को हम शुरू करते हैं। अक्सर किसान ज्यादा खाद डालने को ही अच्छी पैदावार का उपाय मानते हैं, क्या ये सोच सही है?
2: नहीं, ये किसानों का एक अपना बहुत ही गलत परंपरा या जिसको कहिए कि विचार है कि जितना फसल को आवश्यक हो उतना ही पोषक तत्वों को उसमें डालना चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी एरिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी हो।
1: जी
2: जो हर खेत में या हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे उनकी आवश्यकता
1: बदल जाती
2: बदल
1: होगी।
2: जाती है और
1: जी
2: उसके अनुसार उनको प्रबंधन करना चाहिए। और इसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा अपनी मृदा का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए और उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट का, उससे या वहाँ पे जो केवीकेज हैं या जो आईसीआर के संस्थान हैं या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें काम करती हैं, वो मिट्टी की जाँच करके उनको NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन किसानों को लगता है कि उनके
1: जी
2: सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी है तो वो उनका भी अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन सोयल हेल्थ कार्ड फ्री से बना के दिया जाता है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो वो बनाना उनके लिए अति आवश्यक है। अगर वो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसलों की लागत है वो बढ़ती है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। इसमें आप जैसे नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रेट के रूप में सोयल के अंदर लीचिंग होता है, वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट
1: जी
2: करता
1: जी
2: है।
1: जी
2: इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में लॉसेस हो जाते हैं तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही नहीं करते बल्कि ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करते हैं, कुछ ये भी देखा गया है।
0: और डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया मृदा की जांच करानी चाहिए समय समय पर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच किसानों के लिए कितनी आवश्यक है और इसे कितने अंतराल पर हमें कराना चाहिए?
2: मिट्टी की जांच बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आज के समय में खेती करना कोई फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। लेकिन कितने अंतराल पे करवाएं, ये एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए लगभग ऐसा मानते हैं कि 2-3 साल के बाद में हमारे जो खेत है जहां
1: जी
2: हम काश्तकारी कर रहे हैं उसका फर्टिलिटी का जो स्टेटस होता है या कहिए कि पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, वो लगातार किस तरह की फसलें लेते हैं या उसके अंदर किस तरह के ऑपरेशन करते हैं किसान, या कितना हमारी सॉइल बह रही है या बाहर से आ रही है, तो वो चेंज होती रहती है। तो कम से कम 3 साल के इंटरवल पे एक बार अगर उसको फिर से करवा ले
1: जी
2: तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, जांच के लिए किसान को कहाँ जाना होगा?
2: सबसे पहले तो यह है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उनके पूरे देश में कवरेज है, हर स्टेट का है, केवीकेज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करती हैं, आईसीआर के अपने संस्थान भी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें
1: जी
2: काम करती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो कहीं भी किसान अपनी सुविधा अनुसार इनसे मिल सकता है, इनसे मिल के अपनी मृदा की सैंपल और पानी के सैंपल उनको दे सकता है। तो उसके पास में एक अपना जो सॉइल का और पानी का ये रहता है कि हमारे यहाँ पे किस तरह का जो पानी है सिंचाई के लिए वो उपलब्ध है और हमारी जो मृदा है उसका न्यूट्रिएंट या उसका पोषक तत्वों का स्टेटस क्या है, तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने सॉइल टेस्टिंग के बारे में और सॉइल कार्ड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये विषय है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमारे सामने इस वक्त आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, यानी कि एकीकृत रूप से अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन को एक समग्र विषय के रूप में लेकर चलें तो उसको किस तरह से हम देखते हैं? दरअसल अगर उसे हम आसान भाषा में समझाना चाहें तो वो क्या है और हमारे किसान भाई बहनों को उससे क्या लाभ मिल सकता है?
2: देखिए, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम करते क्या है कि उसमें जैसे हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर, और इन सब का जो हमारी सोइल के अंदर जिस पोषक तत्वों की हमारे पास सोइल हेल्थ कार्ड होता है जिनकी कमी होती है, उसके अनुसार हमें कितना FYM या ग्रीन मैन्योरिंग या वर्मी कंपोस्ट या उसके साथ में सीड ट्रीटमेंट के रूप में बायो फर्टिलाइजर्स, चाहे एजेटोबैक्टर है, फास्फोर सोलिबिलाइजिंग है, पोटास सोलिबिलाइजर है या माइकोराइजा है या कुछ वाम वगैरह भी आती, तो उनका और प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया, फास्फोरस, DAP या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका एक समायोजन करते हैं कि ना उसको ज़्यादा देते हैं ना कम देते हैं, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी फसल भी एक कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। इसलिए उनको एक समायोजित फॉर्म में हम लाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर और ये सब का इंटीग्रेशन।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में वर्षा अक्सर देखा गया है कि काफी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से उर्वरकों के बह जाने की समस्या रहती है, तो इससे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं?
2: देखिए, उर्वरकों के बहने की जो ज्यादातर समस्या होती है वो नाइट्रोजन के केस में होती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की जो एप्लीकेशन है वो बुआई से पहले ही कर दी जाती है और उसका मृदा के अंदर ही ज़्यादातर आज तक जितने भी किसान कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन होता है। लेकिन जो यूरिया वो बह के रन ऑफ के तौर पे भी चली जाती है या फिर उसका वोल्टिलाइजेशन भी हो जाता है, कई तरह के लॉसेज होते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या है कि एक तो हम स्प्लिट डोज जिसको बोलते हैं कि एक साथ नहीं लगा के बार बार उसको लगाए, हर क्रॉप के लिए एक दो तीन चार स्प्लिट में बांटा हुआ है, उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि फोलियर एप्लीकेशन दें, जैसे यूरिया का छिड़काव करें उसके ऊपर, तो वो क्या है कि डायरेक्टली आपके पत्तों के ऊपर जाता है और वो अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए उनको। क्या है कि अगर आपने अभी यूरिया की फोलियर एप्लीकेशन किया है और बारिश हो गई 5-6 घंटे बाद में, तो भी वो बेकार नहीं जाता है, ना ही वो धूप के जाता है, पूरा उसी ड्यूरेशन में पौधा उसको मैक्सिमम ले लेता है। उसके बाद में जैसे नीम कोटेड यूरिया होती है तो उनमें क्या होता है कि स्लो रिलीज होता है, बाकी तो क्या है कि पोषक तत्वों को ऐटे एक ही समय में वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन उनको स्लोली रिलीज करते हैं, तो जो पौधों का अब्जॉर्प्शन का टाइम होता है
0: जी,
2: जैसे आज लगाया एक तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 1-5-7 दिन तक वो बने रहते हैं, तो उनको समय ज्यादा मिल जाता है, तो वो ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
0: तो पूजा, बात करते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं अपने आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर साहब, आपने नीम कोटेड यूरिया का जिक्र किया, तो एक सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या नीम कोटेड यूरिया ज्यादा उपयोगी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? और साथ ही साथ, चूंकि यूरिया का जिक्र हो ही गया है, तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यूरिया का सही उपयोग के लिए आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, इनका जो नीम कोटेड यूरिया है वो ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर की रिलीज करने का जो टाइम है, उसकी जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सोइल के अंदर, वो उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है उसका।

0: होता है जिसे
1: स्लो
0: आपने
1: रिलीज
0: कहा।
1: होता है,
0: जी
1: तो वही बेसिक उसका एक पर्पज होता है। तो जो भी किसान भाई, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी फसलें हैं, स्पेशली धान है, जिनके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट या जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ पे इनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस एरिया में, जैसे खरीफ अपनी वर्षा आधारित होती है मोस्टली, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और फिर भी उन सॉइल में थोड़ा बहुत यूरिया देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो उस केस में क्या होता है कि उनको थोड़ा ही ड्यूरेशन मिलता है ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो वो कंट्राडिक्टरी भी देखा गया। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये फायदेमंद ही होता है
0: नीम कोटेड
1: नीम
0: यूरिया।
1: कोटेड यूरिया,
0: जी
1: कुछ एरिया को छोड़ दे जिनमें
0: जी
1: बहुत कम बारिश होती है और इमीडिएट ड्यूरेशन के बाद में उनमें ड्राई स्पेल आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो खरीफ है इसके अंदर वर्षा आधारित ही एरिया होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका, बाकी तो ये सबसे है। और आजकल तो इसके लिए नैनो यूरिया भी एक विकल्प आ गया है, जो
0: जी
1: बहुत ही
0: जी हम
1: फास्ट और डायरेक्टली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, तो
0: राइट
1: किसान भाई उसका भी प्रयोग
0: हाँ
1: कर।
0: उस और डॉक्टर साहब, एक पारंपरिक खेती तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ आजकल तकनीकी आधारित खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे में जो नई तकनीक आ रही है जैसे ड्रोन, सेंसर या डिजिटल कृषि, ये सब मिलकर पोषक तत्व प्रबंधन को और अधिक किस तरीके से प्रभावी बना रही हैं?
1: देखिए, ये बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज जितना भी हमारा जो फसलों का उत्पादन है उसके अंदर अगर हम उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो
0: जी
1: उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी लागत कितनी आ रही है। और ये सब जो तकनीक हैं, डिजिटल कृषि है, आपका ड्रोन है, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर कौन सी समय किस पोषक तत्व की कमी है,
0: जी
1: और ड्रोन से हम कितने बड़े एरिया में तुरंत फॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी भी कई तरह की पेस्टिसाइड वगैरह भी हम उसमें डाल सकते हैं, इवन वीडिसाइड भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा डिजिटल मैप है, खेत का भी है, फसलों का है, तो हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि फसल का हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, तो हमें देखेंगे कि जिसका कलर ऐसा है तो ये पोषक तत्व है, क्या आवश्यकता है, तो हमें
0: जी
1: इस चीज़ का स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी होते हो। तो
0: डायग्नोसिस में आसानी रहेगी इससे।
1: डायग्नोसिस में भी है, और हमारा जैसे ऑपरेशन करते हैं
0: जी
1: वो समय भी बचाएगी, कॉस्ट भी बचाएगी, लेकिन उनकी जो इनिशियली कॉस्ट होती है, जो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जैसे ड्रोन है परचेज करना है या दूसरी,
0: जी
1: वो कुछ समय ज़्यादा होता है। इसलिए किसान कुछ कर रहे हैं जो इनोवेटिव फार्मर हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की। हमने अपने श्रोताओं से वादा किया था कि आज हम उन्हें लोकगीत सुनवाएंगे, तो लगता है पूजा उसका समय आ गया है। जी तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लोकगीत।

0: लोकगीत के बाद श्रोताओं आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आजकल चर्चा में काफी छाया हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसे में पोषक तत्व प्रबंधन की जो हमारी रणनीति है उसको किस तरह बदलना चाहिए?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हमारा अतिवर्षा या कम वर्षा की स्थिति भी पैदा हो रही है।
0: जी
1: उसके साथ में हमारा टेम्परेचर भी कभी ज़्यादा कम भी हो रहा है, तो ऐसे में हमें पोषक तत्वों को पौधों को डालने के लिए या उनको उपलब्ध करवाने के लिए हमें एक बहुत ही सटीक निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है
0: जी
1: वहाँ पे तो क्या करना होता है कि हमें पोषक तत्वों के अंदर कुछ जैसे नाइट्रोजन का ही ज़्यादा रोल होता है, उनको बार बार अप्लाई करना, कि जैसे हमें जितना भी डोज देना उसको नंबर ऑफ स्प्लीट बढ़ा देते हैं,
0: मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी
1: बढ़
0: उसकी।
1: जाएगी, और
0: और
1: फॉलियर एप्लीकेशन के
0: जी
1: ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं, नैनो यूरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जहाँ पे शॉर्ट फॉल आ रहा है तो उसमें हमारी रिकमेंडेड डोज होती है। जैसे
0: जी
1: हमें पता है कि अभी ड्रोट आने की स्थिति हो रही है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा जितना रिकमेंडेड नाइट्रोजन है उतनी लगाएं, क्योंकि अगर उतनी हम लगाएंगे तो उस एरिया में पहले से पानी की कमी
0: कमी है
1: है
0: जी,
1: और हमारी फसलें जल्दी सूख जाएंगी। तो
0: राइट
1: उस समय हमें जो रिकमेंडेड डोज या जिसको हम बोलते हैं जितनी चाहिए उतनी, उसे कम कर देते हैं, ताकि हमारी फसलें भले ही उससे जितना उत्पादन नहीं देंगी लेकिन
0: जी
1: कुछ
0: सूखेंगी
1: समय
0: नहीं।
1: लेट सूखेंगी।
0: जी जी
1: तो ये भी एक रणनीति होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जिस एरिया में ड्रोट आने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट या जिसको हम बोलते हैं FIM, ग्रीन मैन्योरिंग या कंपोस्ट है, ये सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक मैटर भी सस्टेन रहता है।
0: जी
1: तो इसलिए इनका अगर समावेश करें तो ज़्यादा अच्छा होता है।
2: और डॉक्टर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरीफ फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे अच्छा ये है कि किसान भाई अपनी फसलों को रेगुलर देखें, हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी है नहीं है, हमें यूरिया डालना है या नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि हम पड़ोसी लगा रहा है हम भी आके लगा देते हैं,
2: जी
1: नहीं, हमें ये देखना होता है कि अगर वाकई ही हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें LCC कार्ड भी होते हैं या हम कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और उससे हमें पता लग सकता है।
0: जी
2: जी, तो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर तुलसाराम जी। आपने खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी सलाह किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायक होगी।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ, अब हम अपने श्रोताओं को कृषि संबंधी सलाह भी दे देते हैं, जो कि कृषि परामर्श कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को दिया जाता है। तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का छिड़काव वे न करें और खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें।
2: बिल्कुल पूजा, और किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा

0: मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें।
1: जी, और इसी के साथ इस मौसम में किसान भाई बहन स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल निकास का उचित प्रबंध रखने की व्यवस्था उनको करनी होगी।
0: और साथ ही वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह।
1: अब हम जिक्र बाजार भाव का भी कर लेते हैं। सब्जियों और फलों के मंडी के भाव का जिक्र करें तो सबसे पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। आलू का बाजार भाव 18 रुपए प्रति किलो है और प्याज 30 रुपए प्रति किलो है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, खीरा 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है और शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो पर आगे चल रही है।
0: पूजा, अगर फलों के आज मंडी के भाव की हम बात करें तो आज सबसे पहले सेब की बात करते हैं, जो कि 200 रुपए प्रति किलो का भाव रहा। केले की बात करें तो केला आज 25 रुपए प्रति किलो के भाव में चल रहा है। अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो। पपीता की बात करें तो पपीता 30 रुपए प्रति किलो और तरबूज 22 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में बिक रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये है आज का बाजार भाव फलों और सब्जियों का। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और सिद्धार्थ, अब हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेनी होगी।
0: तो लेते हैं किसान भाई बहनों से विदा। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम एम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद लेते हैं चंद खूबसूरत सी गजलों का।

0: श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता।

0: मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र को भी भर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 6ठा सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगी और हर बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सदन के समक्ष उपलब्ध कार्य के अनुसार बैठक की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, साथ ही नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी सूचनाएं नेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित DM कार्यालय में इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने कार्यालय में योजना की पात्र महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजना महिलाओं के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी की महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में टीबी हारेगा भारत जीतेगा राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जन भागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा और स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं, साथ ही उनके सहयोग से 1,20,000 से अधिक पोषण आहार टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि टीबी का समय पर पता लगने और उपचार पूरा होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जांच, उपचार तथा परामर्श से वंचित न रहे। श्री सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन अभियान एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदित्य के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या है। इससे पहले इस साल 8 जून को 12 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी ने आज शास्त्री पार्क कैंपस में कंक्रीट संरचना की मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जयपुर मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा दूसरे प्रमुख अवसंरचना संगठनों सहित 35 भारी संगठनों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसमें इंजीनियरों, शिक्षाविदों, इंडस्ट्री के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर कंक्रीट की मरम्मत, सुधार और रेट्रोफिटिंग में हुई नई तकनीकी पर चर्चा की गई। साथ ही CSIR, CBRI रुड़की और IIT मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों और उद्योग के बड़े संगठनों के जानकारों ने तकनीकी सत्र लिए। इस सत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन, टिकाऊपन बढ़ाने, मरम्मत के आधुनिक और उन्नत पदार्थ, जंग से बचाव और रेट्रोफिटिंग की नई तकनीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग शिक्षा जगत सहयोग के लिए एक बेहतर मंच प्रदान किया गया, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा में क्षमता निर्माण के प्रति दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के निदेशक, कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, सराय काले खान नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाए रखना है। एक रिपोर्ट।
3: इस अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही 30 जुलाई 2026 तक सराय काले खां FOB पर मेट्रो रेल अधिनियम 2002 की धारा 59 के अंतर्गत कुल 56 चालान काटे जा चुके हैं। NCRTC सतत जागरूकता अभियानों और स्वच्छता नियमों के प्रभावी परिवर्तन के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से दिल्ली परिवहन निगम DTC की एक नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई बस सेवा निगम मुख्यालय से बांकनेर गांव तक आरंभ की गई है, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली वासियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता है। वहीं स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक विकसित और आधुनिक दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बचे कूड़े के शीघ्र निस्तारण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैंडफिल साइट के प्रवेश मार्ग को पक्का करने के आदेश दिए हैं, जिससे लैंडफिल साइट पर भारी वाहनों का सुगमता से आवागमन होता रहे। आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर हर रोज आने वाले नए कूड़े के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल अब

0: ने हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर लोगों से पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करते थे।
1: कंप्लेनेंट ने बताया था कि व्हाट्सएप पे उनके पास मैसेज आता है और कमीशन बेसिस पे अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताते हैं कि इसमें कमीशन बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हमने FIR रजिस्टर करी रेलेवेंट सेक्शंस में BNSS के और डेडिकेटेड टीम बनाई जिन्होंने फाइनेंशियल ट्रेल्स को देखते हुए CCTV की एनालिसिस करी और UPI ट्रांजेक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करा। इस पूरे प्रकरण में 6 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई और बाकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस भी मिले हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे अपने खेल करियर से आगे बढ़कर भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी में योगदान देने का आग्रह किया।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने नई दिल्ली में रायसीना बैडमिंटन अकादमी और पिकल बॉल एरेना का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम अच्छा रहा और राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ स्थित चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8 बजकर, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम आज आप सभी के लिए प्रयोग कर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

बाघ को जन्म देने वाला बाबा, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर

0: प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236.60 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
4: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी

0: की व्यवस्था खड़ी करी। लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
3: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year, but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुताल्लिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुताल्लिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हका खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक बिल का मकसद

0: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज़्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ ज़िला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज़्यादा की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुतालिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फ़र्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अरकान नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशाखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर माँ कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तई ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखादही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखादही मामलात से निमटने में बेहतरी पैदा की जा सके।

0: अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने में तेज़ी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नज़रसानी की है। नज़रसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहाँ अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिला वजह हलाकतें हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज़ कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुतला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका अहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नज़रिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर POJK के बाग ज़िले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद POJK के में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर JAAC ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए ये बात कही। JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद ज़िले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाक़ियात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे POJK में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरमीन को वापस भारत लाया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराइम में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वज़ारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरमीन से निमटने के लिए मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस की क़ियादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इक्तसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वज़ारत ने वाज़े किया कि साबिका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमन क़ानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेत से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज़ AI-2379 में परवाज़ के दौरान मुख्तसर तौर पर ख़राब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज़ में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज़ दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारे में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपये, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपये और कांसी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपये नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठे दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखिर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजका खेज करार दिया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मनोज जी।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
3: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हुई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे, तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डंप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए, जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम 2 के बाद फेम 3 भी कह सकते थे, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ना ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंडर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अब थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2000

0: 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था, जिसमें काफ़ी गाड़ियां बिकी है, इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो, टू व्हीलर्स सारे पिकअप हुए, और बसेस भी काफ़ी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अपने। जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को, तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में।
1: यहाँ पर रोनेंद्र थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियाँ विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
0: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले। फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को। उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में जो सितंबर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना अनुमान लगा देते कि भाई इसमें अगर हमको इतना परसेंट देना है कस्टमर्स तो हम भी अपने प्राइस को इतना कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए भी यूज करूंगा चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने भी खुद भी आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
1: जी,
0: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि ओएम्स ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ गाड़ी का बैटरी जो है वो दे उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका कि कुछ भी वेयर एंड टीयर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती है कि अच्छा मेरे को मैं ईवी यू नो मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा मुझे अच्छी नहीं लगी क्या नहीं तो आपको अशॉर्ट बाई बैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली तो आपको अशॉर्ट बाई बैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है आपने 3 साल चला ली जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मतलब दे डोंट सी उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा। तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं 20 साल के शुरुआत से।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के, वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल हैं उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
0: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है
1: जी
0: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है फेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का, टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं, छोटे कह लें कि शहर हैं, वहाँ भी हम थ्री व्हीलर का और टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो टीयर टू हमारे टीयर थ्री टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर जो 1 टन के नीचे आते जो छोटा ट्रक जिसको बोलते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए एक वो भी अब एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि वी ऑल्सो ऑल्सो केयर फॉर एनवायरमेंट, उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर या छोटा

0: फोर व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है, जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, उसके बाद आता है 4 व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो करीबन 30,000 32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का,
1: जी
0: तो उसमें से अगर 30-40 हज़ार भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है, और PM ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों का होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का अभी कमी है। लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे असम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो,
1: जी
0: आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो, अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च देवी करके जो
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बसेस जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए JBM या टाटा अशोक
1: जी
0: लेलैंड के।
1: जी जी
0: तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है अभी, छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके, और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था CNG की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है, और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियाँ हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी PM ड्राइव के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस का भी हम लॉन्च करेंगे, और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहाँ पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में,
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी से हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सब के साथ भी गवर्नमेंट टाइप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं कितनी बार रुकूँ
1: जी
0: हाईवे
1: जी
0: पे, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं, उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूँ तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो, और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, और ये भी कर दिया अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे या मर्सिडीज हो गए, BMW हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप है, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूँ कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहाँ किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में जैसे NCR नोएडा हो गया जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो RWs हैं वो लोग मना कर देते हैं, कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है, हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, या कभी वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं, बट फिर भी लोगों के माइंड में ही रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चंस करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में, घर के साइड में,
1: जी
0: तो वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है, उनका मकान है, उसके साथ साथ में अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजिली आप अवेल कर सकते हैं।
1: जी
0: स्पेशली 2 व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, 2 व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग और बैटरी ऑलरेडी है ही, और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या 2 व्हीलर को।
1: जी बहरहाल हमारे सामने क्या
0: जरूर
1: चुनौतियां हैं रोनेन्द्र, ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए, लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, जैसे किसी में 10-20 हज़ार रुपए का बस फर्क होगा, जो कि हमारे सीएनजी और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था।
1: जी
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है, जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना एसी चला रहे हो, कितने स्पीड में चला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहे होंगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाए, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक, 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे, एसी ऑन होगा आपका, तो ये होता था कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवे में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से, मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे, 350, एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके, आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 350-350 किलोमीटर कवर करना है तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं, ईवी क्रांति हो चुकी है। आप इसके सहयात्री कब बनेंगे, ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा

0: जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies, and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money, and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Minister of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries, and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. In Jharkhand, students protesting over alleged paper leaks in Jharkhand Public Service Commission and other recruitment examinations today demanded an inquiry by an independent panel of retired High Court judges from outside the state, saying that they no longer trust the ongoing CID investigation. The protesters have been staging an indefinite sit-in in Ranchi since 29th of July. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। कलाकार थे श्री राम, जिनकी आवाज में आपने सुनी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित प्रभात कुमार का राग पहाड़ी झिंझोती में सरोद वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना पंडित प्रभात कुमार का राग पहाड़ी झंझोती में सरोद वादन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

0: बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. according to the revised

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम में हम बहुत ही खूबसूरत से नगमे आपके लिए पिरो कर लेकर आए हैं। हर गीत अपने आप में कुछ अनोखा है, कुछ अनूठा है, और कुछ गीत तो ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर आप जब सुनने की कोशिश करते हैं, जब भी आप उन गीतों को सुनेंगे तो उस लोकेशन जहाँ पर वो फिल्माए गए हैं, वो सारी की सारी तस्वीर एक बार फिर से आँखों के सामने उभर कर आ जाती है। कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीतों की श्रृंखला है, और अब कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म कभी अलविदा ना कहने का ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म लम्हे से, बहुत ही खूबसूरत सा गीत और बहुत हसीन वादियों में इसका फिल्मांकन हुआ। जब हम गीतों को सुनते हैं तो जहाँ वो फिल्मांकन होता है उन गीतों का, जहाँ वो पिक्चराइज्ड किए जाते हैं, उस चीज़ को भी, उस लोकेशन को, उस जगह को देखकर भी हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं और कुछ चीज़ों के साथ हम जुड़ जाते हैं।

फिल्म हम है रहे प्यार के से ये गीत लिया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और इस गीत की जब बात करते हैं तो ये गीत राजस्थान में फिल्माया गया था, और राजस्थान अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है। उसका जो किला है जिस पर इस गीत को फिल्माया गया था, वो किला उसके बाद बहुत ही चर्चित रहा और लोग वहाँ पर जाना भी आरंभ किए, उन लोगों ने उस किले को देखना भी शुरू किया। और धीरे धीरे जो फिल्में हैं ना, ये हमारे देश की कई ऐसी धरोहरों पर जब पिक्चराइज की गई, वहाँ पर उनके फिल्मों को या तो फिल्माया गया या फिर गीतों को फिल्माया गया, तो लोगों के बीच उस जगह के बारे में जानना या उस जगह को देखने की उत्सुकता भी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो गीत हैं या जो फिल्में हैं, ये हमें हमारी धरोहरों से भी जोड़ने का काम करते हैं। फिलहाल तो इस जुड़ाव को थोड़ा सा विराम देने का भी वक्त हो चला है, क्योंकि हम जो अब गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा। फिल्म झूम बराबर झूम से ये गीत लिया है, इसका ये टाइटल सॉन्ग है, और गीत गाया है के सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने, और गीत बहुत ही खूबसूरत है। इसी गीत के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अमरीका का अंतिम लक्ष्य है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना तत्काल प्राथमिकता है। इस बीच कतर ने पुष्टि की है कि अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म जीत से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गीतकार प्रेम धवन के बारे में। गीतकार प्रेम धवन का जन्म 13 जून 1923 को अंबाला में हुआ था, जो कि

वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में पढ़ता है और इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई लाहौर से पूरी की थी। पढ़ाई के दौरान ही ये कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने लगे थे।

फिल्म तराना से ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में। संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। श्रोताओं, प्रेम धवन के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1946 से ही हो गई थी। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इनके कैरियर की जो शुरुआत हुई थी वो लाहौर शहर से ही हुई थी। उन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में एक नए संगीतकार की ज़रूरत थी, जिसके लिए इनका चुनाव किया गया था। इस फिल्म में उन्होंने संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक के तौर पर काम किया था। ये फिल्म हिट हुई और इस तरह उन्हें एक पहचान मिली। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

दिया। श्रोताओं, फिल्म आज और कल का संगीत हिट होने के बाद प्रेम धवन ने बंबई की ओर रुख किया और उसके बाद इन्होंने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन की सदस्यता ले ली और उसके बाद शास्त्रीय संगीत और गायक रविशंकर की सहायता से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेने लगे। 1940 में ही इन्हें फिल्म धरती के लाल के गीत लिखने का मौका मिल गया और इनके लिखे हुए गीत हिट हो गए और उसके बाद तो इन्होंने फिल्म आराम, ताराना, काबुलीवाला, एक फूल दो माली जैसी अनेकों फिल्मों के लिए गीत लिखे। आइए सुनते हैं फिल्म वचन से इनका लिखा हुआ ये गीत आशा भोंसले की मधुर आवाज़ में। संगीत दिया है रवि और चंद्रा ने।

श्रोताओं, गीतकार प्रेम धवन न केवल एक बेहतरीन गीतकार थे बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। इन्होंने कई फिल्मों में गीत भी लिखे थे और उन्हीं फिल्मों में इन्होंने संगीत भी दिया था। ऐसी ही एक फिल्म थी शहीद। इस फिल्म में एक्टर मनोज कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के जो गीत थे बहुत सुपरहिट हुए थे, जिससे गीतकार प्रेम धवन को बहुत नाम और ख्याति हासिल हुई थी। आइए सुनते हैं फिल्म शहीद से इनका लिखा हुआ ये मशहूर गीत, मुकेश महेंद्र कपूर और राजेंद्र भाटिया की आवाज़ में।

और संगीत देने के अलावा भी प्रेम धवन ने दो फिल्मों में अभिनय भी किया था। इनमें पहली फिल्म थी लाजवाब, जो 1950 में रिलीज हुई थी, और दूसरी फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, जो 1959 में रिलीज हुई थी। आइए सुनते हैं फिल्म लाजवाब से ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, गीतकार प्रेम धवन वास्तव में एक अनोखी प्रतिभा के धनी थे। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि प्रेम धवन ने 7 से भी अधिक फिल्मों में नृत्य निर्देशक के तौर पर काम किया था। इनके नृत्य निर्देशन में कई गीत बहुत हिट साबित हुए थे। ऐसा ही एक गीत सुनते हैं, आइए, फिल्म नया दौर से, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, प्रेम गीतकार प्रेम धवन के कुछ गीत जो कि देशभक्ति गीत थे, बहुत हिट साबित हुए थे। ऐसा ही एक गीत उन्होंने लिखा था फिल्म काबुलीवाला के लिए। आइए सुनते हैं फिल्म काबुलीवाला से ये गीत मन्ना डे की मधुरावास में।

श्रोताओं, गीतकार प्रेम धवन को हिंदी कला जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1970 में बेहतरीन नागरिक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उसके साथ ही 1971 में फिल्म नानक तुखिया सब संसार में बेहतर गीत लिखने के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। श्रोताओं, वाकई में प्रेम धवन साहब बहुत अच्छे गीत लिखते थे। ऐसा ही गीत इन्होंने लिखा था फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए। आइए सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से महेंद्र कपूर साहब और साथियों की आवाज़ में ये इनका लिखा हुआ ये गीत।

श्रोता हूँ, गीतकार प्रेम धवन की 80 के दशक में सक्रियता ज़रा कुछ कम हो गई थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रहने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गीत लिखे थे और वो गीत हिट भी हुए थे। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं फिल्म उपकार से उनका लिखा हुआ ये मशहूर गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

वाकई में श्रोता हूँ, प्रेम धवन जी ने वाकई में एक से बढ़कर एक गीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं, फिल्म एक फूल दो माली से मन्ना डे की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, गीतकार प्रेम धवन की मृत्यु 7 मई 2001 को 77 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हो गई थी। हालांकि आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपने बेहतरीन गीतों और उम्दा संगीत से वे सदैव हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी अब इशारा कर रही है कि आज का सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते सुनते हैं प्रेम धवन जी का लिखा ये प्यारा सा गीत फिल्म अप्पू राजा से, एसपी बालासुब्रमण्यम की मधुरावास में।

0: लोगो राजा के संग संग झूम लो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपये की

0: Kapadia Masters tournament in Assam yesterday. The Indian pair won the match 21-16, 21-18, and that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों गीतों के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये गीत केएल सहगल साहब की आवाज़ में।

फिल्म भक्त सूरदास से ये गीत अभी आपने सुना केएल सहगल साहब की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तानसेन से खुर्शीद की मधुर आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्म गीतों के मधुर गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनोखी अदा से, मुकेश और शमशाद बेगम की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि हम आपको पुराने समय के बेहतरीन से बेहतरीन गीत सुनवाएं। इसी श्रृंखला में हम आइए सुनवाते हैं हम आपको फिल्म बरसात से ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बूट पॉलिश से

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बूट पॉलिश से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आर पार से गीता दत्त की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म CID से, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी।

0: लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha already passed the bill.

आपके साथ आज मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

और एक डायरेक्टर के साथ काम काफ़ी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: इसी के साथ श्रोताओं, आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए

0: देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जिसको जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इनमें रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, कॉपीराइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी तथा संस्कृति जलवायु और सतत विकास शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता आज से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुडा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 विद द राज्यसभा अप्रूविंग इट यस्टरडे। द लोकसभा हैज ऑलरेडी पास्ड द बिल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय मूव्ड द बिल इन द अपर हाउस। This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays in and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MS

नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताज़ा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

0: गीत और गज़लों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। ज़्यादा 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। प्रातः 4:20 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री उषा विजय कुमार का रागम चारुकेशी में गोट्टू वाद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। सुबह के 4:56 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में।

5:20 पर देशभक्ति गीत, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी, प्रातः 6:10 का वक्त रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, प्रातः 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 8।

0: 7:10 पर संगीतिका प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरे गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। नौ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। प्रातः 9:30 पर मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 10:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद का, और 11:10 पर सबरत प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास और सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान सहयोग, नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेन देन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच की मांग की दोहराई। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं।

निरंतर लंबी गहरी सांस लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का

पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: आओ योकरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन।